0: பண்பலை எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் நேயர்கள் இனி கேட்க இருப்பது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கி சாத் மே முகேஷ் குமார். राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषध निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस

0: पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाएं, खुश रखें और आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। रेनू, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ 19th ऑफ अगस्त। तो मुकेश, जैसा कि आप ऑलरेडी बता ही चुके हैं दैट दिस इज़ आज सवेरे आर डेली न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम वेयर इन वी आर गोइंग टू गिव द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे टू आर लिसनर्स। बट बिफोर दैट लेट्स बिगिन विद द न्यूज़ फर्स्ट।
0: जी बिल्कुल
1: जी।
0: सरकार ने पाइप से रसोई गैस PNG कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। यह योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों तक पाइप वाली रसोई गैस पहुंचाना है। देश में इस समय 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन है।
1: The United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice. UAE Foreign Ministry Communications Director Afra Al-Hameli said the decision is aimed at protecting regional stability and maintaining the integrity of the international financial system. The announcement comes after the UAE's air defense systems detected 2 ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. UAE Defense Ministry later said both missiles were assessed to have been targeting maritime navigation and fallen into the sea. UAE said it remains committed to dialogue, cooperation and regional integration as a means of promoting peace and stability. Iran has not yet

0: commented on the UAE's allegations. However, Tehran has warned that the Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States.
1: झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, उप जिलाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी की परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा।
0: National Testing Agency NTA has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a four-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further, NTA officers will be shifted to the new premises where security will be reinforced with CISF teams.
1: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ACB ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली जल बोर्ड की निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं और आपराधिक षड्यंत्र मामले में की गई हैं। सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर ये मामला दर्ज किया गया था।
0: Moving on to the world of sports and badminton, Indian shuttlers registered comprehensive wins at the BWF World Championships in New Delhi yesterday. Men's singles ace Lakshya Sen defeated Austria's Collins Filimon in the first round, while the Indian duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand continued their winning run to enter the pre-quarterfinals. We have a report.
2: Ace shuttler Lakshya Sen entered the second round of the men's singles at the BWF Badminton World Championships. He defeated Collins Filimon of Austria in the opening round. The Indian shuttler was down after the first game at 16-21. However, Lakshya clawed back to register one-sided wins in the next two games, 21-8, 21-4. In the women's doubles, India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to the pre-quarterfinals after outshining United States' Lauren Lamb and Ellison Lee in straight games, 21-15, 21-12. Meanwhile, the Indian women's doubles pair of Kavipriya Selvam and Simran Singhi bowed out of the World Championships after losing to Stefanie Stoeva and Gabriela Stoeva of Bulgaria, 21-7, 21-14. Earlier in the day, Unnati Huda advanced to the women's singles second round after Myanmar's Thet Tar Thuzar in straight games, 22-20, 21-16. Meanwhile, the mixed doubles duo of Rohan Kapoor and Rutvika Shivani Kadde faced a defeat against the Canadian pair of Jonathan Lai and Crystal Lai in the mixed doubles first round. After winning the first game by 22-20, the Indian duo lost the next two games by 19-21 and 17-21. With Vishnu PS, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
1: और नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मैच महत्वपूर्ण है। भारत के दो मैच में 3 अंक हैं। अगले दौर में पहुंचने के लिए भारत को आज का मैच ड्रॉ कराने की जरूरत है। भारत ने विल्स को हराया और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के दो मैच में केवल 1 अंक है। इंग्लैंड पूल डी में दोनों मैच जीतकर पहले ही अगले दौर में पहुंच चुका है। और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो रेनू सबसे पहले आप बताएं चेन्नई में क्या खबरें हैं आपके पास।
0: मेरे पास दो खबरें हैं चेन्नई से मुकेश। द फर्स्ट वन, द तमिलनाडु ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मिनिस्टर डी शरद कुमार हैज सेड दैट मैरिड विमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन स्टेट विल गेट अ फुल ईयर मेटर्निटी लीव फॉर द थर्ड चाइल्ड एज वेल। इन हिज रिप्लाई एट द स्टेट असेंबली ही स्टेटेड दैट फीमेल एम्प्लॉइज वर एलिजिबल फॉर फुल ईयर मेटर्निटी लीव फॉर देयर फर्स्ट and second child and 12 weeks leave for the third child. Now, the women get the same benefit for the third child also. He noted that the total fertility rate in the state is about 1.3 children per woman, which is well below the replacement level of 2.1. The fertility rate in the state was 3.9 in 1971, 2.7 in 1986,

0: and 1.6 in 2017 and that is quite alarming, Mukesh. Hame iske bare mein zarur dhyan rakhna hai. And the second news is State Health Minister K.G. Arun Raj announced the Tamil Nadu Chief Minister's Elderly Health Insurance Scheme in the State Legislative Assembly. The program will provide a free cashless medical treatment to nearly 38 lakh residents aged 70 and above with a number of income ceilings for eligibility. He also said that the advanced treatment will be offered free of charge at government and empaneled private hospitals. Moving on to you, Mukesh.
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अब किसी भी मंत्री के किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप कर सकते हैं और उसे रद्द कर सकते हैं. यह कानूनी शक्ति मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र सरकार के कार्य नियम 2026 की आधिकारिक अधिसूचना के बाद मिली है. महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने मुंबई में कल ऐतिहासिक एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में पुस्तकों, दुर्लभ दस्तावेजों, पुरातत्व कलाकृतियों, मानचित्रों और दुर्लभ सिक्कों के समृद्ध संग्रह का अवलोकन किया. श्री वर्मा ने कहा कि इस समृद्ध विरासत और संस्था के प्रति युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के तरीकों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि एशियाटिक सोसाइटी को एक जीवंत और गतिशील संस्था बनाना चाहिए. और मुंबई में मीरा भयंदर को वसई विरार से जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 13 और पुणे रिंग रोड को विस्तार की मंजूरी मिल गई है. मेट्रो लाइन 13 कॉरिडोर पर लगभग 17,725 करोड़ रुपए की लागत आएगी और पुणे रिंग रोड के पूर्वी विस्तार के लिए 10,502 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.
0: Moving on to Bengaluru Metro, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar said the state has emerged as a global hub for research and innovation due to the skills of its youth. Speaking at World Youth Skills Day at Vidhan Sautha, he said, "Skill is an invaluable asset that cannot be stolen," and urged students to compete at the global level. He said the government is planning to launch Yuva Sethu or Udyoga Sethu to connect youth with private sector job opportunities. He also announced plans for an AI university and urged students to attend the Bengaluru Tech Summit in November this year. The Chief Minister stressed that skills along with education are essential for employment and encouraged youth to develop practical skills and pursue global opportunities. Now the news that I have from Bengaluru Metro, the Ubuntu Consortium will host the fifth edition of its Together We Grow program on the 2nd of next month at Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry in Bengaluru. This year's theme for the program is Business Beyond Borders. Ubuntu founder, president and former Karnataka Chief Secretary K. Ratna Prabha said the program will provide practical guidance on digital platforms, e-commerce, government e-marketplace, GEM and Open Network for Digital Commerce, ONDC, to help women-owned businesses reach national and global markets.
1: और अब कल करते हैं कोलकाता का रुख. पश्चिम बंगाल सरकार दार्जिलिंग पर्यटन विभाग के साथ चाय की ब्रांडिंग करेगी. इसके लिए एक चाय महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा. राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने कल ये जानकारी दी. उन्होंने कोलकाता में बताया कि महोत्सव आगामी सर्दियों में दार्जिलिंग मॉल और सिलीगुड़ी में आयोजित होगा. श्री घोष ने कहा कि इस पहल से संबंधित सिलीगुड़ी की चाय नीलामी समिति के साथ पहले ही चर्चा हो चुकी है. इसके अतिरिक्त सिट्टोंग में भी एक संतरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा.
0: एंड News from Hyderabad Metro. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has promised strong action to protect people's property rights. He recently held a review meeting on the registration of lands listed under the 22A prohibited list. If a person books an online slot to register land that falls under the 22A list, revenue officials must verify the land within 2 days. If it is confirmed to be private land, registration will be done immediately without delay. Aur ye sab kis liye ho raha hai, Mukesh? Because Section 22A is a list maintained under the Telangana Registration Act. It contains government lands, temple and endowment lands, waqf lands, assigned lands, and other protected properties that are banned from private sale or registration to prevent illegal transactions.
1: और करते हैं अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख. दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत गणना पूरी हो चुकी है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार इस प्रक्रिया के अंतर्गत करीब 1 करोड़ 45 लाख गणना प्रपत्र वितरित किए गए. इस महीने के 24 अगस्त से

0: 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन के आधिकारिक पत्र 26 अगस्त से जारी किए जाएंगे। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 26 अगस्त को एक समारोह में इसकी शुरुआत होगी। इस योजना के अंतर्गत 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के शुभारंभ के बाद केवल 18 दिन में करीब 8 लाख महिलाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जबकि 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए जा चुके हैं। और नई दिल्ली के आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर 10 दिन का पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। 20,000 से अधिक पुस्तकों के साथ ये पुस्तक मेला आगंतुकों को अपनी पसंदीदा किताबें देखने, चुनने और खरीद कर घर ले जाने का अवसर प्रदान कर रहा है। ये मेला 23 अगस्त तक सवेरे 9 बजे से रात 10 बजे तक सभी आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और रेनू कटारिया के साथ। आज सवेरे में अब वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो रेनू सबसे पहले दिल्ली का मौसम बताएं।
1: बिल्कुल,
0: तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। दिल्ली में कल कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हुई है और आज आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: मुकेश, यू जस्ट मेंशन दैट देयर वाज सम स्पेल ऑफ रेन इन दिल्ली यस्टरडे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुई, सो लेट्स प्रे।
0: कुछ इलाकों में कहीं कहीं हुई है
1: जी,
0: और
1: सावन का महीना चल रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा दुख हो रहा है
0: जी, चिंताजनक भी है।
1: सो लेट्स ऑल प्रे एंड होप दैट इट रेन्स वेरी सून अगेन। And moving on to Chennai, it is likely to rain or thundershowers are likely, particularly towards the evening or night. The temperatures are expected to range between a minimum of 27 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience generally cloudy with light rain or drizzle possible sky. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. And Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 24 degrees to 32 degrees Celsius.
0: और आज सवेरे में वक्त हुआ है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का आज के इतिहास के दिन क्या कुछ हुआ है। तो आज तारीख है 19 अगस्त और आज ही के दिन
1: एंड टुडे अगस्त 19 मुकेश ब्रिंग्स अस टू इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, सो लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट बोथ एंड द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, मानवतावादी होने का अर्थ शायद बस इतना है कि जब किसी का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाए तब उसके साथ खड़े होना चाहिए। हर वर्ष 19 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उन मानवीय सहायता कर्मियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो संघर्षों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों तक भोजन, दवाइयां और आश्रय जैसी सहायता पहुंचाते हैं।
1: दो मुकेश, इट इज अ डे दैट वी से शुड बी यू नो मनाना चाहिए हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर डे के दिन ही या डेट के दिन ही, जैसे कि अगस्त
0: ना जी, बिल्कुल
1: जी, लेकिन ये जिस तरह हम आजादी को सिर्फ एक डेट से नहीं हम उसको एड्रेस कर सकते, हम अपनी आजादी हमें रोज मनानी चाहिए, उसी तरह आई थिंक द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे शुड नॉट जस्ट बी अ डे, इसे रोज हमें जीना चाहिए बिकॉज इन द एंड वी आर ऑल ह्यूमंस एंड दिस डेट आल्सो कैरीज अ वेरी पावरफुल मेमोरी। ऑन दिस डे इन 2003 अ बॉम्ब अटैक ऑन द यूएन हेडक्वार्टर्स एट द कनाल होटल इन बगदाद killed 22 people, including UN Special Representative Sergio Vieira de Mello. In 2008, the UN General Assembly officially designated 19th August as World Humanitarian Day, first observed in 2009. The theme for this year's World Humanitarian Day is strengthening global solidarity and empowering local communities, continuing the ongoing global campaign call to hashtag Act for Humanity.
0: और वर्तमान में उनका काम पहले से कहीं अधिक

0: चुनौतीपूर्ण और खतरनाक होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानवीय सहायता कर्मियों को अपने मिशन के दौरान लगातार हत्या, घायल होने, अपहरण, हिरासत और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस विश्व मानवता दिवस पर आइए उन लोगों को याद करें जिन्होंने दूसरों की मदद करते हुए अपनी जान गंवा दी। उन लोगों को सलाम करें जो आज भी अग्रिम मोर्चे पर सेवा में जुटे हुए हैं, और खुद को ये याद दिलाएं कि करुणा कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति है।
1: सो वेरी वेल सेड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे।

0: was publicly announced in Paris on 19th of August, the date that inspired World Photography Day.
1: और पिछले समय की अगर हम याद करें तो एक समय ऐसा था कि जब तस्वीरें खींचने में घंटों लग जाते थे और आज स्मार्टफोन एक सेकंड के भी छोटे से समय में किसी पल को कैद कर लेते हैं. फोटोग्राफी ने एक लंबा और अद्भुत सफर तय किया है.
0: एंड द वर्ड इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल. फोटोग्राफी लिटरली मींस ड्राइंग विद लाइट.
1: तो आज चाहे वो कोई मनमोहक सूर्यास्त हो, किसी की अनायास खिली मुस्कान हो, या रोजमर्रा का कोई ऐसा पल जो अचानक खास लगने लगे, एक पल ठहरिए, अपने आसपास देखिए और उसे कैमरे में कैद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक तस्वीर वो कहानी कह देती है जिसे हजार शब्द भी बयां नहीं कर सकते. विश्व फोटोग्राफी दिवस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं.
0: जी, फोटोग्राफ स्पीक्स 1000 वर्ड्स.
1: बिल्कुल
0: जी.
1: और आगे बढ़ते हैं. 1757 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला एक रुपए का सिक्का ढाला था.
0: इन 1949 भुवनेश्वर बिकेम द कैपिटल ऑफ ओडिशा रिप्लेसिंग कटक.
1: अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा आज ही के दिन 1919 में की थी.
0: इन 1960 ऑन दिस डे द सोवियत यूनियन लॉन्च स्पुटनिक 5 और करबल स्पुटनिक 2, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सेंड एनिमल्स इनटू ऑर्बिट एंड रिटर्न देम सेफली टू अर्थ. द कैप्सूल कैरी द डॉग्स बेलका एंड स्ट्रेलका प्लस सेवरल अदर एनिमल्स ऑन दिस डे. On the same day in the year 1964, SINCOM 3, the world's first geostationary communication satellite, was launched.
1: 1977 की बात करें तो आज ही के दिन सोवियत संघ ने सेरी सागान में परमाणु परीक्षण किया था.
0: And moving on to the year 2010, the last US combat brigade left Iraq, marking the end of major combat operations in Operation Iraqi Freedom.
1: और वान डेन हुगेन बैंड ओलंपिक खेलों के सबसे तेज तैराक बने थे 2004 में आज ही के दिन, जबकि 2007 में अंतरिक्ष स्टेशन पर गए मिशन एंडेवर के यात्रियों ने स्पेस वॉक आज ही के दिन पूरा किया था. और 2009 में आज ही के दिन नौसेना के कमांडर दिलीप डोंडी स्वदेश निर्मित नौसेना नौका महादेई से संपूर्ण विश्व की यात्रा के अभियान पर रवाना हुए थे.
0: जी.
1: और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि. इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी की. आज उनकी पुण्यतिथि है. खयाम बॉलीवुड के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया, मगर उनके गीत और धुनें अमर हैं. उनके गीत रोजाना रेडियो और टेलीविजन पर किसी न किसी रूप में सुनाए दिखाए जाते हैं. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करीब 40 साल तक काम किया और 35 फिल्मों में संगीत दिया. खयाम ने शर्मा जी नाम से कुछ फिल्मों में भी संगीत दिया है. तो खयाम की फिल्मों के कुछ गीत हम लोग निकाल के लाए हैं, तो क्यों ना वो सुने जाए.
0: बिल्कुल सुनते हैं.
2: कभी

और अपने श्रोताओं को बता दें, खयाम के मामा जी को गीत संगीत से बेहद लगाव था। उन्होंने ही बंबई में खयाम को बाबा चिश्ती से मिलवाया, जो बी आर चोपड़ा की फिल्म ये है जिंदगी का संगीत तैयार कर रहे थे।

और अपने श्रोताओं को बताएं कि जब महीने का आखिरी दिन उनको खाली हाथ रहना पड़ा तो ये देखकर चोपड़ा ने बाबा से पूछा इन्हें पैसे क्यों नहीं दिए, तो जवाब मिला ट्रेनिंग पीरियड में ये मुफ्त में काम कर रहे हैं। तो चोपड़ा की बात रास नहीं है और उन्होंने फौरन अकाउंटेंट से 125 रुपए खयाम साहब को देने की बात कही।

और बाबा ने उन्हें अपना सहयोगी तो बना लिया, मगर कहा कि पैसा टका कुछ नहीं मिलेगा। संगीतकार खयाम ने फिल्म रोमियो एंड जूलियट में एक्टिंग भी की थी, और एक बार फिल्म के सेट पर खयाम और चोपड़ा सही समय पर पहुंचते थे और बाकी लोग देरी से आते थे। महीने के आखिरी दिन सबको वेतन दिया गया, लेकिन केवल खयाम खाली हाथ रहे।

और अपनी हथेली पर इतने रुपए देखकर खयाम की आंखों में आंसू आ गए। चोपड़ा साहब की इस मेहरबानी को उन्होंने हमेशा याद रखा और बाबा चिश्ती के खयाम को सहायक तो बनाया मगर सिर्फ खाना खुराक और खुली का किराया अदा करते थे।

0: और खयाम को 1977 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला, जबकि 1982 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का एक और पुरस्कार उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का मिला, और 2007 में संगीत नाटक अकादमी से उन्हें पुरस्कार मिला, जबकि 2011 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: And today is the birthday of John Richard Deacon, who is an English retired musician best known for being the bass guitarist for the rock band Queen. He composed several songs for the group, including top 10 hits You Are My Best Friend, Another One Bites the Dust, Back Chat, and I Want to Break Free, and was involved in the band's financial management also. But here, dear listeners, we're going to listen to Another One Bites the Dust by Queen.

0: और भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता उत्पल दत्त की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। एक अभिनेता के रूप में उत्पल दत्त ने लगभग हर किरदार को निभाया है। हिंदी पर्दे पर कभी पिता तो कभी चाचा, कहीं डॉक्टर तो कहीं सेठ, कभी बुरे तो बहुत अच्छे बने उत्पल दत्त को दर्शक किसी भी रूप में नहीं भूल सकेंगे। उत्पल दत्त को अधिकतर एक हास्य अभिनेता के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 1979 की सुपरहिट फिल्म गोलमाल में उनके अभिनय जो उन्होंने निभाया, भवानी शंकर का शानदार हास्य अभिनय आज भी सभी को याद है। उत्पल दत्त एक उच्च दर्जे के अभिनेता ही नहीं, कुशल निर्देशक और नाटककार भी थे। सीरियल से लेकर कॉमेडी तक के हर रोल को उन्होंने बड़ी संजीदगी से निभाया, तो क्यों ना उनका एक डायलॉग सुना जाए।
1: कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे स्ट्रेट और ग्रेट सिंगर से मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। तुम बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी भारी भरकम भाषा लिखने में प्रयोग करो, बोलने में नहीं, समझने में जरा तकलीफ होती है।
2: Today is the death anniversary of Anthony David Leighton Stock, who was an English film director, producer and screenwriter. And if we talk about directing films, his thriller films and action movies, the top one is Top Gun, Beverly Hills Cop The Second, Last Boy Scout, True Romance, Crimson Tide, Enemy of the State, Man on Fire, Deja Vu and Unstoppable. And Scott was the younger brother of film director Sir Ridley Scott. And here we're going to listen to a beautiful song, You Take My Breath Away, from the movie Top Gun.

और जाने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में आज सवेरे 9:30 बजे से द आर्ट एंड एस्थेटिक फाउंडेशन की ओर से डांस कोरियोग्राफी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता फेस्टिवल ऑफ कोरियोग्राफी के दूसरे सत्र का आयोजन किया जाएगा। और LTG ऑडिटोरियम में शाम 6 बजे से कलश कलाश्री की ओर से अमर शूरवीर की शौर्य गाथा पर नाटक का मंचन होगा। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शाम 6:30 बजे से वैक्सीन उभरते वायरल प्रकोप पर चर्चा आयोजित होगी। और इंडिया हैबिटेट सेंटर में शाम 7 बजे से सरगुन से निर्गुन कबीर इमोशंस पर नृत्य प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए। तो मुकेश कुमार और रेणु कटारिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
5: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के

0: पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
2: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉ शंकर

0: दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मयूरभंज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने ये घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म

0: Bulletin, the headlines once again. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satender Jain and five others in the Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசை. நேரம் 8:30.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை FM கோல்ட் 100.1.
1: பாரதிய சேனா.
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए देश के लिए।

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி ஆங்கில செய்தி தொகுப்புகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए जाएंगे।

0: झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण प्रदान करने में तेज वृद्धि हुई है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण रूपरेखा के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु की 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को दूरदर्शी शासक बताया। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिए हैं। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत के 2 मैच से 3 अंक हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच ड्रॉ करना आवश्यक है। भारत ने अब तक वेल्स पर जीत दर्ज की है, जबकि उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल्फ क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगा। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The government has approved an incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from 1st of next month. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas in their kitchens at the earliest. Currently, there are 1.74 crore domestic PNG connections across the country. The ministry added the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbuilt connections into working gas connections and expand the PNG network to new areas. It said that piped natural gas offers households a safer, cleaner and more convenient alternative to LPG cylinders and traditional cooking fuels. The scheme will be implemented over 2 tranches spanning 6 months. The National Testing Agency, NTA, has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a 4-tier question papers checking system will be put in place.

0: निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर के दौरे पर हैं। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। 2022 में स्थापित मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन भारत और सिंगापुर के बीच एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आर्थिक तंत्र है। ये उन्नत विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता सहित 6 स्तंभों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री जायसवाल ने शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
2: जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
1: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के ये बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमीरात के इस दावे का खंडन किया है कि ईरान ने अमीरात की ओर कोई मिसाइल दागी थी। ईरान ने अमीरात के आरोपों पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अमरीका के साथ शांति समझौता होने तक होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत तब तक के लिए रोकने को कहा है जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार न हो जाए। अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला तब लिया जब होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति और दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका और ईरान के द्वारा परस्पर विरोधाभासी बयान जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले कल श्री ट्रंप ने कहा था कि नौसैनिक नाकेबंदी जारी है, लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य खुला है। उधर ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्री यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
3: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल ने सीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलीब में अबू दोहर एयरबेस पर हवाई हमले किए हैं। इसराइल ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य एयरबेस पर तुर्कीय सैनिकों की तैनाती को रोकना था।
4: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि एयरबेस पर तुर्की सैनिकों की तैनाती की अनुमति देकर सीरिया ने मौजूदा सुरक्षा समझौते के उल्लंघन की कोशिश की थी। ऐसी तैनाती सुरक्षा के लिए खतरा है। उधर सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शिबानी ने इस हमले को उकसावे की कार्रवाई और संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को खतरा हो सकता है। तुर्की ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसराइल की सीरिया के विरुद्ध बढ़ती आक्रामकता को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेही

0: निश्चित करने की अपील की है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब सीरिया में प्रभाव को लेकर इजराइल और तुर्की के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है। तुर्की के सीरियाई सरकार के साथ करीबी संबंध है और वह उसकी सेना को सहायता देता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की इच्छा जताई है। दोनों नेताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ये पहल ब्राजील और अमरीका के बीच बढ़ते राजनीतिक और व्यापारिक तनाव के बीच हुई है। राष्ट्रपति लुला ने हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो ब्राजील में होने वाले आगामी राष्ट्रपति चुनाव में अमरीका की संभावित दखलंदाजी को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना चाहते हैं। ब्राजील सरकार को आशंका है कि चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए विदेशी दखल हो सकता है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि फिलहाल सैन्य दखल की संभावना कम है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के पश्चिमी भाग में सोने की एक खदान में धंसने से करीब 30 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। हादसे में कई अन्य मजदूरों के फंसे होने की भी आशंका है। यह हादसा कल नाना मोम्बेरे प्रांत के अब्बा क्षेत्र में हुआ। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि बचाव दल और स्थानीय लोगों ने कई घंटों की कोशिश के बाद खदान से 30 शव बाहर निकाले। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारियों से भारत में निवेश तथा साझेदारी को अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब तक ईरान समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसराइल ने सीरिया के इदलीब प्रांत में अबू दुहूर हवाई अड्डे पर हमले किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। मैच आज शाम 6:30 बजे से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: சுகமான ராகங்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தி ஆங்கில செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. सरकार ने पाइपलाइन से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की योजना को स्वीकृति दे दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाए।

0: जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज मंत्री स्तरीय शिष्टमंडल के साथ सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर रवाना हो गई हैं। वे वहां चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में 10 परिसरों पर तलाशी ली है। निदेशालय ने बताया है कि ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया था, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रनों का लक्ष्य मिला है। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। उधर भारतीय महिला टीम ने कल शाम दूसरे ग्रुप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त दी। भारत अपने अंतिम पूल मैच में कल इंग्लैंड से खेलेगा। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,919 अंक पर और निफ्टी 100 अंक गिरकर 24,053 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

குடிகெடுக்கும் குடிக்கு ஒரு அடி கொடுப்போம்.

0: மெல்லிசை கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி ஆங்கில செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,921 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 24,058 पर था। मौसम

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए और

0: IIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
4: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए

0: न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व आईएसआरओ अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 500,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओड्राफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र

0: में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कूलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
2: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை. லய விநியாசம் நிகழ்ச்சியில் திருவண்ணாமலை S. வேதியப்பன், ரத்னகிரி RS. சதீஷ் ஆகியோரின் தவில் பகுதி 2 இடம்பெறுவது ரூபகதாளம்.

చీకట్లో చూసిందేదో ఓ లమ్మో గైరమ్మో కేవ్ వంటూ అరిచిల్.

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో ఢిల్లీ నుంచి వార్తలు ప్రసారమవుతాయి.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే జాగృతి శర్మ. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी. इनमें 4 रेलवे की परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रूपये की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी. श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को सेवाओं के दायरे में लाएंगी. ये परियोजनाएं हैं खड़गपुर भद्रक चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर चौथी लाइन, गुमिड़ी पुंडी गुदुर तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप तीसरी और चौथी लाइन. इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी. श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030 से 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य है. श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसाखंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है. आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है.
2: इन्वेस्टमेंट स्टोरी हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है. आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं. इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है. इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे.
3: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी.
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है.
4: उत्तर प्रदेश आज भारत की top 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है. बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है. 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000

0: अत्यधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमू के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल स्तर के साथ सिंगापुर पहुंची। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल स्तर में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल करने की बात कही गई है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विशेष रूप से प्रश्न पत्रों को सील करने के लिए स्थायी समिति, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और संस्थागत विशेषज्ञता के निर्माण से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विस्तृत जानकारी मांगी। भारत ने गोल में आज दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर ही सिमट गई। नीदरलैंड्स में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। भारत अब तक दो मैचों में 3 अंक हासिल कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Projects worth over 13,000 crore rupees were approved by the Union Cabinet today under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. These include 4 railway and 1 highway project. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave the details about the projects while briefing media after the Cabinet meeting in New Delhi today. Mr. Vaishnav informed that 4 multi-tracking projects of railways will cover 8 districts across West Bengal, Orissa, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
3: आज 5 बहुत बड़े फैसले लिए।
4: टुडे 5 major decisions हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 projects आर रिलेटेड टू रेलवेज, व्हाइल द 5th इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। अमंग द 4 railway projects, सम इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोड लिंक्स ऑन द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट, व्हाइल अनदर इज द कोड लिंक ऑन द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज अ 4-lane हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर विया सीतामढ़ी टू सोलबरसा। दिस प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,881 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे।
2: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a range of 6-8%. He said this growth story is driven by 4 key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Mr. Vaishnav was addressing the Uttar Pradesh Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference 2026 in New Delhi. The Supreme Court today reiterated the need to institutionalize the National Testing Agency or NTA with secure infrastructure, dedicated testing centers, cyber security systems, institutional expertise, and a permanent mechanism for examination-related operations to prevent future paper leaks. While hearing pleas concerning the NEET UG 2026 paper leak, the court directed the Secretary for the Union Ministry of Education to file an affidavit setting out the steps being taken to implement the Radhakrishnan Committee's recommendations. President Draupadi Murmu has said that the world of technology, media, economics and public policy is changing rapidly. She stated this while interacting with officer trainees of Indian Information Service and Indian Statistical Service, who had called on her at Rush

0: Rashtrapati Bhavan in New Delhi. On the occasion, she advised the officers to be judicious in their decisions, compassionate in their conduct, and unwavering in upholding integrity. Kolkata police has formed a special investigation team to probe the death of 9 people in a fire at a hotel on Mirza Ghalib Street in Kolkata's New Market area. Industry Minister Tapas Roy and Municipal Affairs and Urban Development Minister Agnimitra Pal visited the spot this morning. She questioned how the hotel was allowed to operate despite allegedly lacking adequate fire safety arrangements and an emergency exit. Heavy rain in Uttarakhand, particularly in the hilly areas, has disrupted road connectivity at several places. Efforts are underway to restore connectivity at the earliest. Flood situation remains critical in several parts of North Odisha, with Bhadrak among the worst affected as swollen rivers inundate villages and disrupt normal life. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall conditions over North Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. Iran's Armed Forces Chief of Staff, Major General Ali Abdullahi, has warned that countries on the southern shores of the Persian Gulf should not assist or facilitate U.S. military forces. He also alleged that the presence of military aircraft stationed at regional bases cannot be without the knowledge of the host countries. Benchmark domestic equity indices ended in a negative zone today. Sensex declined 326 points to close at 76,910. In men's cricket, India beat host Sri Lanka by 165 runs in the first test of the two-match series in Galle today. India now leads the two-match series 1-0. Chasing a target of 372, Sri Lanka were bowled out for 206 during the post-lunch session on day 5, handing India a comfortable victory. And that is the end of this news bulletin.
1: அடுத்த அறிவிப்பு தொடர்கிறது. நேரம் 4:10, ஆகாஷ்வாணி.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: தேநீர் நேரம் கேட்போம். முதலில்
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: Tenure is 3 years or until superannuation. Applications with all required documents should be sent through proper channel to the ministry within 60 days of publication in the Employment News. For details and updates, kindly visit the website at www.employmentnews.gov.in. The Border Security Force, BSF, is inviting applications on deputation for the post of Commandant, Water Wing, Level 13, Second in Command, Water Wing, Level 12, and Deputy Commandant, Level 11. Eligible officers from Central Paramilitary Forces, Central State Governments, UT Administrations or PSUs holding analogous posts or with required years of service in the relevant pay levels and possessing a degree or diploma in mechanical, automobile or marine engineering with at least 3 years' experience in the relevant field may apply. Applicants must be medically fit, shape 4, and not exceed 56 years of age. The deputation period varies by post, generally ranging from 2 to 3 years and extendable. Applications with all required documents should be sent through proper channel to the Deputy Inspector General, Personnel, BSF, Block No. 10, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi, 11003, within 60 days of publication in the Employment News. For full details and performer, kindly visit the website at www.bsf.gov.in. The Indo-Tibetan Border Police Force, ITBPF, operating under the Ministry of Home Affairs, Government of India, is inviting applications from eligible Indian citizens to fill 2 posts of senior administrative officer on deputation basis. The positions are placed in pay matrix level 11 with additional allowances as admissible to central government employees. Applicants must meet the qualification and eligibility criteria detailed in the official notification, which can be downloaded from the ITB website. Interested candidates should ensure their applications are duly filled and accompanied by all required documents and must reach the Senior Administrative Officer, Personnel, Directorate General, ITBP, Block 2, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi, 11003, through proper channel within 2 months from the date of publication in the Employment News. For details, kindly look up the website at www.itbpolice.nic.in. I repeat, it is www.itbpolice.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार. नमस्कार. रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा. आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. भारत संचार निगम लिमिटेड सीधी भर्ती योजना के तहत कंपनी सेक्रेटरी के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है. इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत सूचना और आगे के अपडेट के लिए देखें वेबसाइट www.bsnl.co.in. वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान अनुबंध और प्रतिनियुक्ति के आधार पर इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है. एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, अनुसंधान अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, प्लेसमेंट अधिकारी तथा प्रत्ययन अधिकारी, इन सभी पदों की रिक्तियां अनुबंध के आधार पर भरी जानी है, जबकि सहायक प्रबंधक, लेखा अधिकारी और कार्यकारी सहायक पद के लिए रिक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी. शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, पात्रता मानदंड, अनुबंध अवधि, आवेदन प्रक्रिया तथा नियुक्ति से संबंधित नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.vamnicom.gov.in. निर्धारित आवेदन प्रपत्र को ईमेल के माध्यम से भेजा जाना है इस पते पर recruitment@vamnicom.ac.in. नाविक भविष्य निधि संगठन मुंबई के कार्यालय में नाविक भविष्य निधि आयुक्त के पद के लिए प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. संबंधित ब्यौरा देखिए

0: इस वेबसाइट पर www.dgshippingg.gov.in www.dgshipping.gov.in। केंद्रीय सूचना आयोग में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट तथा स्टाफ कार ड्राइवर। पदों की संख्या, योग्यता के नियमों, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट cic.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर ऑल रिक्रूटमेंट सेक्शन में सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन न्यूज मैगजीन प्रोग्राम में आप सभी का। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की कुछ खास रिपोर्ट्स भी आपको सुनवाएंगे और साथ ही खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे एक नज़र। परिक्रमा कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के संघ के साथ मैं हूँ विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा।
2: नमस्कार विशाल, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड सो विशाल, टुडे ऑफ कोर्स हस्बे दस्तूर जो हम लोग लाते हैं ताज़ा तरीन खबरें, उसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर आर डेटलाइन इंडिया बिकॉज टुडे इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, सो उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो लास्ट सेगमेंट है विशाल आज का, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लिसनर्स वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इवन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज एक बहुत ही अजीम शायर को याद करेंगे, उसके अलावा एक बहुत अजीम म्यूजिक कंपोजर को।
1: जी बिल्कुल,
2: सो ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
1: प्रमुख समाचारों से शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है।
2: सुप्रीम कोर्ट सीक सेंटर्स रिस्पॉन्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग राधा कृष्णन कमिटीज रिकमेंडेशन ऑन एग्जाम रिफॉर्म्स आफ्टर नीट यूजी पेपर लीक।
1: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की संभावना।
2: इंडिया डिफीट श्रीलंका इन फर्स्ट टेस्ट बाय 165 रन्स, मानव सूथर टेक्स 6 विकेट्स।
1: और एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला होगा पाकिस्तान से।
2: And as I had mentioned, Vishal, that today is World Photography Day and that's our topic for today's Dateline India. Well, every year, 19th of August is observed as World Photography Day, the day when light learned to remember and to capture moments forever. A day when we celebrate something that has become almost inseparable from our lives, that is the photograph. Yes, a photograph can be a face, landscape, festival, family gathering, a historic event, or simply a child's smile. It can capture a moment that lasts only a fraction of a second, and yet it is preserved for generations in the form of that

0: photo. Today, we are going to travel through more than 180 years of photography, from the early experiments in Europe to the extraordinary richness of Indian photography. Our story begins in 19th century France. Inventors Nives and Louis Daguerre worked on methods of producing permanent images using light and chemistry. Nives had already produced an early permanent camera image years earlier, while other inventors, including Henry Fox Talbot, were developing alternative photographic processes. Talbot's calotype process, announced in the early 1840s, was particularly important because it used paper negatives that could be used to make multiple prints.
1: सर, फोटोग्राफी का जन्म जो है असल में एक्सपेरिमेंट, कंपटीशन और सहयोग की एक कहें तो कहानी थी, और जब ये टेक्नोलॉजी सबके लिए उपलब्ध हुई तो फोटोग्राफी का एक सफ़र शुरू हुआ, और ये सफ़र हैरानी की हद तक तेज़ी से भारत तक भी पहुंचा। 1840 के दशक की अगर हम भारत की कल्पना करें, उसका तस्वुर करें, तो तब स्मार्टफोन नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं था, डिजिटल कैमरे भी नहीं थे, और तुरंत फोटो खींचने की कोई सुविधा भी नहीं थी। फिर भी एक नई टेक्नोलॉजी ने देश भर के लोगों का ध्यान ज़रूर आकर्षित किया था। दिसंबर 1839 तक भारत के अखबारों में नए डेगुएरो टाइप कैमरे के आने की खबरें छपने लगी थीं। 1840 तक कलकत्ता में फोटोग्राफिक कैमरों के विज्ञापन भी दिए जाने लगे थे। इसके बाद फोटोग्राफी तेज़ी से विकसित हुई। शौकिया लोगों, पेशेवर फोटोग्राफरों, पत्रकारों और औपनिवेशिक काल के अधिकारियों ने इसे अपनाया। 1850 के दशक में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों में फोटोग्राफिक सोसाइटियां बनी। कैमरे ने भारत के लोगों, इमारतों, प्राकृतिक दृश्यों, स्मारकों और रोजमर्रा की जिंदगी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था।
0: That's so right, Vishal. In fact, if you remember, if you look at very old photographs, जो maybe वो बेलो कैमरा से खींची जाती थी, या जिनका फ्लैश बल्ब एक बार में फट जाता था, so people actually used to hold their breaths, क्योंकि उनसे कहा जाता था हिलिएगा नहीं।
1: कैमरे के पीछे कैमरामैन पर्दा डाल करके, उसमें अपने सर पे भी पर्दा डाल करके, कैमरे को भी ढक करके फोटो लिया करते थे।
0: Yes, absolutely. So you know, that is how you know photography has evolved, and that is how probably humans have always been fascinated, you know, with these pictures, chahe wo apni ho, chahe cheezon ki ho. But when I was talking about portraits, you look at all the pictures of those days, people are literally standing as if they are standing in attention and holding their breaths, because wahan pe jo camera photographer hota tha, because obviously shutter speed itni evolved nahi thi, to zara sabhi moments blur kar sakta tha. So literally people used to hold their breaths. I think that was very, very interesting. And well, India did not merely receive photography, it actually transformed it. The immense diversity of the country gave photographers an extraordinary visual world to explore, from the Himalayas to the Deccan, from the ghats of Banaras to the places to the palaces of Rajasthan, from temples of South India to the streets of Kolkata, from the royal courts to villages, India became a vast photographic canvas.
1: और अगर हम भारतीय फोटोग्राफी के चंद बड़े व्यक्तित्वों की बात करें, तो एक नाम पर विशेष रूप से ख्याल ध्यान जाता है, और वो हैं राजा दीनदयाल। 1844 में उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास जन्मे दीनदयाल ने फोटोग्राफी को गंभीरता से अपनाने से पहले इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन के तौर पर ट्रेनिंग ली थी। आगे चलकर वे 19वीं सदी के भारत के सबसे मशहूर फोटोग्राफरों में से एक बने। उनकी तस्वीरों ने हमें भारतीय राजघरानों, वास्तुकला, प्राकृतिक दृश्यों और आम लोगों की जिंदगी की दुनिया से रूबरू कराया। उन्होंने ग्वालियर, खजुराहो और मध्य भारत के दूसरे इलाकों की बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीरें लीं, और बाद में हैदराबाद के निज़ाम के दरबार से भी जुड़े। उन्हें वायसराय का फोटोग्राफर नियुक्त किया गया था।
0: That's right, and of course among the recent names and most prominent among of them all probably appears of Raghu Rai, who passed away recently, but his photographs, his works through, you know, his lens captured India, I think it will be there for posterity. And chahe wo aam logon ki zindagi ho sadkon pe, or just capturing the beauty of the Taj Mahal, I think the lens of Raghu Rai has proven that photography is an art. And when photography in India was not only just beautiful pictures, it actually became a tool for documenting reality, architecture, even society and political events. In fact, when the independence movement was there, to aap us zamane ki pictures dekhe, or probably you know after it gained independence, there's a very iconic picture of our first prime minister Jawaharlal Nehru that was captured by Homai Vyarawalla. She was the first

0: फर्स्ट फीमेल फोटोग्राफर एंड मेरी खुशकस्मती कि मैं उनसे मिली थी एंड देन शी डिस्क्राइब दैट मोमेंट दैट अमंग अ स्वॉर्म ऑफ फोटोग्राफर्स शी वॉज द ओनली वुमन कैरिंग दैट कैमरा एंड उस फोटो के पीछे ना वो कहानी ये बताई कि एक्चुअली वहाँ पे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड थी. पीछे देयर इज अ बोर्ड ऑल्सो वेयर नेहरू इज स्टैंडिंग दैट यूज ऑफ कैमराज इज फॉरबिडन एंड येट हुमायूं व्यारावाला हैज टेकन दैट आइकॉनिक पिक्चर.
1: जी सायरा, आपने हुमायूं व्यारावाला की बात की और इन्हें भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर याद किया जाता है. 1913 में एक पारसी परिवार में जन्मी हुमायूं 1942 में दिल्ली आ गई थी. उनके कैमरे ने भारत के इतिहास के कुछ सबसे अहम पलों को कैद किया और ब्रिटिश शासन के आखिरी साल और आजाद भारत का जन्म, जैसा कि अभी सारा ने बताया. तो फोटो जर्नलिज्म की एक असाधारण ताकत की हम बात करें तो वो यही ताकत है. और अखबार शायद ये खबर दें, आज इतिहास रचा गया, लेकिन फोटोग्राफर हमें उन लोगों के चेहरे के भावों को बहुत नजदीक से दिखा सकता है जो वहाँ उस समय उस महान अवसर पर मौजूद होते हैं.
0: That's right, and it is always said, Vishal, that a visual carries more impact than words, and even the reach is so vast because एक visual का impact एक uneducated या illiterate इंसान के impact भी होता है. लेकिन अगर शब्द जो है, जब तक किसी को पढ़ना लिखना ना आता हो, वो उन शब्दों के लिए कुछ निकाल अक्षर है.
1: हर तस्वीर कुछ कहती है सायरा, और एक तस्वीर हजार शब्दों की जगह ले सकती है.
0: That's so right. तो अगर आपको होली की मस्ती बयान करना हो, तो आप बयान करने में सोचेंगे क्या शब्द यूज करें, बट इफ यू जस्ट टेक अ पिक्चर प्रॉब्ली मे बी जब लठमार होली खेली जा रही होती है या वृंदावन की, सो आई थिंक इट जस्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इजंट इट. इवन द लैम्प्स ऑफ दिवाली और जस्ट द ग्रैंड ऑफ दुर्गा पूजा विच इज जस्ट टू मंथ्स फ्रॉम नाउ, और मे बी जस्ट यू नो द हसल बसल एट रेलवे स्टेशन, और मे बी द बोट्स ऑफ बनारस, द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, द टी गार्डन्स ऑफ असम, द हिमालयाज, द बैक वाटर्स ऑफ केरला, एवरीथिंग कैन बी जस्ट यू नो कैप्चर्ड इन द camera and probably live for posterity, as I say. And perhaps that is what makes Indian photography so rich, that India is not just one story. These are millions of stories probably woven into one big picture.
1: और समय के साथ साथ फोटोग्राफी में बहुत बड़े बदलाव भी आए हैं. शुरुआती फोटोग्राफरों को भारी भरकम कैमरों और उपकरणों और सावधानी से तैयार की गई प्लेटों और फिर लंबे एक्सपोजर के समय के साथ काम करना पड़ता था. और फिर फिल्म आई और उसके बाद रंगीन फोटोग्राफी का दौर शुरू हुआ और ऑटोमेटिक कैमरे भी आए और अब तो डिजिटल कैमरों का जमाना है.
0: एग्जैक्टली, नाउ दीज डेज यू लुक एट यू नो पीपल आर शूटिंग फिल्म्स ऑन आईफोन्स, कैन यू इमेजिन. एंड आई स्टिल रिमेंबर जो आपने कहा ना, वो जो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव डिवेलप करते थे,
1: जी
0: ओ माय गॉड, दैट इज अनदर एक्सपीरियंस व्हेन यू एंटर द डार्क रूम एंड सडनली एवरीथिंग अपीयर्स ब्लैक बट स्लोली योर आईज गेट एक्लिमेटाइज्ड टू द डार्कनेस एंड देन यू सी एवरीथिंग क्लियरली इन दैट रेड डिम लाइट. और वो जो एक लम्हा होता है ना विशाल, की जब आप फोटो धो रहे होते हैं इन द वॉशटॉप और फिर धीरे धीरे वो उभर के आ रही होती है, आई थिंक अ पर्सन हु हैज डन दिट वुड प्रॉब्ली अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू इट, दैट इट जस्ट गिव्स यू इमेंस जॉय एट दैट मोमेंट. एंड फोटोग्राफी का तस्वीर लेकिन कैमरा के बिना ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है.
1: और आज फोटोग्राफी बहुत इंस्टेंट हो गई है. आज स्मार्टफोन है, डिजिटल कैमरे हैं और फोटोग्राफी को हर व्यक्ति की पहुंच मिला दिया है. yes. अब हर कोई कभी भी कहीं भी तस्वीरें खींच सकता है और उन्हें सहेज कर रख सकता है और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी कर सकता है.
0: That's right. But I think sometimes, जैसे कहते हैं ना कि when you get things in abundance, तो थोड़ी सी वैल्यू कम भी हो जाती है. If you remember those days, जब घर पे हम लोग फिल्म रील डालते थे तो उस रोल में 36 फिल्म्स होते थे, फ्रेम्स रहते थे, तो एक एक फोटो हम लोग बहुत यू नो बड़े उससे लेते थे कि अच्छा इज दिस मोमेंट वर्थ कैप्चरिंग और नॉट. दीज डेज एवरीबडी इज हैविंग अ कैमरा इन द हैंड थ्रू द स्मार्टफोन्स एंड वी आर हैविंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पिक्चर्स इन आर क्लाउड्स यू नो, बट उस वक्त हम लोग एक एक फोटो बहुत ही कहते नहीं सिसक सिसक के उस पर खर्च करते थे कि ओके इस लंबे को चलो केक कटने वाला है, हाँ इस बारी बारी फोटो तो होना चाहिए. बट दीज डेज वी हैव लाइक मल्टीपल टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ आर पिक्चर्स, बट नन द लेस ऑफ कोर्स फोटोग्राफी इज स्टिल समथिंग दैट इज वेरी मच इन वोग. आई थिंक दैट्स द रीजन सो मेनी यू नो मोबाइल कंपनीज दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द कैमरा एंड द फोटो क्वालिटी. एंड एज आई हैड मेंशन टू विशाल दैट फोटोग्राफी इज प्रॉब्ली द इमेजिनेशन ऑफ फोटोग्राफी इज इनकम्प्लीट without a camera. लेकिन जब पता नहीं listeners को ये पता नहीं है या नहीं, but I must share that camera actually comes from the Arabic word कमरा which means room. एंड पहला जो कैमरा था वो एक्चुअली कमरा ही था और एक पिन होल से उसमें लाइट आई थी एंड दैट क्रिएटेड अ वर्चुअल अपसाइड इमेज. सो दैट इज वाई अ कैमरा इज कॉल्ड दैट, बिकॉज

0: पहला एक्सपेरिमेंट अरब में हुआ था. आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द इन्वेंटर, सम अरबिक गाय, बट ऑफ कोर्स दैट इज हाउ इट केम इनटू बीइंग.
1: बहुत अच्छी जानकारी दी आपने. देखा जाए तो कुल मिलाकर के तस्वीरें सायरा वो आईना है जिनमें हम बीते समय को दोबारा देख सकते हैं.
0: दैट्स वेरी राइट. सो ऑन दिस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे परहैप्स वी शुड लुक एट आवर ओन फोटोग्राफ्स अ लिटिल डिफरेंटली. इन एवरी फोटोग्राफ्स there is a story, and behind every story there is a human eye that chose to look closely. So here's wishing a world happy photography world happy world photography day to all our listeners.
1: aur ab chalte hain apne kshetriya samvaddataon ke paas aur jante hain ki unke paas kya khaas reports hain.
0: Well, अब वो हिस्सा शुरू हो गया है विशाल, in which we do the parikrama of the country, and that's why the show is called Parikrama. So we are starting our journey with a very interesting story. Well, India's rich handloom tradition is not only a part of its cultural heritage, but it can also play an important role in creating a more sustainable future. One such effort is Weave the Future, a national platform started by the Ministry of Textiles. The fifth edition of Weave the Future is being held at Handloom Hut in New Delhi from 13th of August to 23rd of August 2026. Union Minister of Textiles Giriraj Singh, on the eve of Independence Day, inaugurated the event in New Delhi. Weave the Future brings together weavers, artisans, designers, brands and innovators on one platform. We have a report.
2: The exhibition showcases the work of 24 nationally recognized weavers presented by the National Handloom Development Corporation. More than 30 selected brands are also taking part in Weave the Future 5.0. These brands represent different craft and design traditions from across the country, including Goa, Pune, Auroville and other regions. A special focus of this edition is on the indigenous and regenerative fibers. Visitors can see products made using materials such as wool, silk, hemp, banana fiber, bamboo, nettle, pineapple leaf fiber and lotus fiber. These materials show how natural resources, traditional knowledge and modern design can come together. A key highlight at the venue is the Vishwakarma Gallery, a permanent exhibition showcasing rare textiles from the landmark Vishwakarma exhibition series held between 1981 and 1991. Developed through collaborations between the weavers' service centers and artisan communities, the collection offers a remarkable window into India's textile heritage and its evolution in the decades following the independence. Some of the upcoming events are Soot Ki Kahani on 21st of August, a hand-spinning workshop with Kandu using the traditional Takhli, Matter of Textile on 22nd of August, and Primary Colors from Nature on 23rd of August, a natural pigment workshop in collaboration with Material Library of India. Visitors will experience immersive installations exploring India's indigenous fiber landscape and the relationship between geography, agriculture, ecology, craftsmanship and textile production, alongside interactive workshops led by practitioners and experts that encourage hands-on learning and dialogue. With Saklen Akhtar's report, Shigyasa Pandey for Parikrama.
1: मॉस्को में चार दिन का इंडिया डे फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा. इसमें भारतीय और रूसी समुदाय संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आएंगे. ये फेस्टिवल इस महीने की 20 से 23 तारीख तक मॉस्को के गोस्तिनी दौर में होगा. संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. लगभग 20 स्पेशल जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियां, डांस और आयुर्वेद को जानने का मौका मिलेगा. उम्मीद है कि इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर शामिल होंगे. 200 से ज़्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले परफॉर्मेंस में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा आने वाले लोगों को कुकिंग मास्टर क्लास, रेस्टोरेंट और असली भारतीय व्यंजन व खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली दुकानों के जरिए भारतीय खाने का अनुभव करने का एक बेहतरीन मौका भी मिलेगा.
0: And now when we are moving towards another story, well, a very interesting story is coming in, Vishal. Lekin usse pehle hum aapse ek sawal puchenge, kya aap kabhi shaam ko chai ke saath kuch vai khane ka man karta hai? Chai vai
1: mein to snacks mein to fir bahut ek healthy snacks ki jab hum baat kare to makhana जो है
0: right.
1: वो बहुत अच्छा लगता है.
0: एब्सोल्युटली. एंड यू नो हम लोग जो है पहले तो उसको कुछ नहीं समझते थे, बट रिसेंटली डाइटिशियन

0: Gandhikam.
1: He took part in the Salt Satyagraha March from Kozhikode to Payyanur in 1930 and braved the brutal blows of the British to hold afloat the tricolour in true Gandhian style. At the time of his untimely death, on August 19, 1948, of snakebite, Krishna Pillai was perhaps the most familiar face in the homes of the labourers and peasants of Kerala.
2: और अब बात करते हैं उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म. और इस कड़ी में सबसे पहला नाम है हमारे सामने जसवंत सिंह रावत. भारतीय थल सेना के जांबाज सैनिकों में से एक थे. उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बांदियों में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था. और उत्तराखंड की पावन भूमि एक और धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान की स्थली रही है, तो वहीं ये भूमि अनेक वीर और वीरांगनाओं की जन्मस्थली भी रही है. 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़कर शहीद होने वाले भारतीय सेना के जांबाज सैनिक जसवंत सिंह रावत आज भी अमर हैं. हीरो ऑफ नेफा जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया था और सेना द्वारा उनकी याद में हर वर्ष 17 नवंबर को नूरानाग दिवस मनाकर अमर शहीद को याद किया जाता है.
3: Today is also Utpal Dutt's death anniversary, and of course he doesn't need any introduction. A very renowned actor, director, and even a very, very accomplished playwright. He was primarily an actor in Bengali theatre, where he became a pioneering figure in modern Indian theatre when he founded the Little Theatre Group in 1949.
2: आप उत्पल दत्त की बात कर रही हैं जी. एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अपनी एक समान अमिट छाप छोड़ी. एक अभिनेता के रूप में उत्पल दत्त ने लगभग हर किरदार को निभाया और उन्हें एक हास्य अभिनेता के रूप में भी बहुत उसके साथ याद किया जाता है, शिद्दत के साथ. और वर्ष 1979 की एक सुपरहिट फिल्म आई थी गोलमाल, और उसमें जो उन्होंने किरदार निभाया था भवानी शंकर का, उस किरदार को आज भी लोग याद करते हैं.
4: आपका शुभ नाम है? राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा.
5: बैठिए बैठिए. सुनील गावस्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है?
4: क्षमा चाहता हूँ सर, क्रिकेट के विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है.
5: ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए.
4: मुझे आज्ञा दीजिए सर.
5: क्यों क्यों, क्या हुआ?
4: अपने विषय के सिवा दूसरे विषयों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है सर. मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि जवानी काम के लिए होती, लेकिन आज पता चला कि पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी.
5: बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पिताजी ने जो सिखाया ठीक सिखाया.
4: ये बैलेंस शीट देखो, ये किस घमंड ने बनाई है सर? ये आदमी तो बिल्कुल दफर है.
5: ये मैंने बनाई है.
2: और आज ही पुण्यतिथि है मोहम्मद जहूर खयाम की. और खयाम एक जाने माने संगीतकार थे हिंदी फिल्मों के. इन्होंने 4 दशकों तक बॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत दिया और वर्ष 1982 में फिल्म उमराव जान के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था.

language of human dignity. His poetry carries the fragrance of an age that believed deeply in beauty, yet refused to look away from the wounds of the society. And of course, जो जानिसार अख्तर की जो कलाम रहे हैं उसके अलावा उनके कह सकते हैं कि उनका नाम लेते ही ऐसा लगता है नावेशा कि किसी पुरानी शाम की खुशबू अचानक से हवा में घुल गई हो, एक ऐसी शाम जिसमें सिर्फ मोहब्बत की नरमी तो है ही, तन्हाई की थोड़ी उदासी भी है, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल या आने वाले कल सवेरे की मोहब्बत भी. और आई थिंक द बेस्ट सॉन्ग दैट हैज़ एवर बिन रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा आई वुड से इज़ ए दिले नादान फ्रॉम रज़िया सुल्तान, एंड कोइंसिडेंटली इट्स रिटन बाय जानिसार अख्तर एंड कंपोज्ड बाय खय्याम. सो वी पे ट्रिब्यूट टू बोथ द स्टॉलवर्ट्स थ्रू दिस सॉन्ग.

0: आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி.
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை FM கோல்டு 100.1.

0: के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल शर्मा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश के विकास को नई गति देने के लिए 7 प्रमुख धाराओं सप्तधारा का उल्लेख किया और आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के निर्माण पर जोर दिया। ऊर्जा और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता भी इसी व्यापक सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत के लिए रणनीतिक आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है और ऊर्जा तथा रक्षा के क्षेत्र में हाल के प्रयास किस तरह भारत को अधिक सक्षम और सुरक्षित बनाने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों में आए व्यवधान जैसे कई घटनाक्रम देखे हैं। ऐसे समय में ये स्पष्ट हुआ है कि संकट के दौरान देश के पास अपनी उत्पादन क्षमता, तकनीक और मजबूत आपूर्ति व्यवस्था होना जरूरी है ताकि वो बिना किसी बाहरी दबाव के फैसले ले सके। ऊर्जा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरत है। घरों में बिजली से लेकर खेतों की सिंचाई, कारखानों में उत्पादन और परिवहन तक हर क्षेत्र के लिए ऊर्जा जरूरी है। ऐसे में बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आने वाले वर्षों में बढ़ने वाली ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित, भरोसेमंद और किफायती तरीके से कैसे पूरा किया जाए। आइए अब सुनते हैं ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रमुख प्रयासों पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट।
1: ऊर्जा आत्मनिर्भरता से जुड़ा पहला महत्वपूर्ण पहलू है परमाणु ऊर्जा। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में शांति एक्ट महत्वपूर्ण है। इसके जरिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता खोला गया है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए निवेश, तकनीक और उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है। भारत में अब स्वदेशी परमाणु रिएक्टरों के साथ साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर भी काम किया जा रहा है। इस वर्ष अप्रैल में 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार नियंत्रित अभिक्रिया शुरू की। ये भारत के स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश का महत्वपूर्ण संकेत है। भारत का 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम घरेलू यूरेनियम और आगे चलकर देश के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग के जरिए लंबे समय की ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने की दिशा में तैयार किया गया है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है समुद्र में मौजूद संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल। हाल ही में सरकार ने 84,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत समुद्र में तेल और गैस की खोज के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण, गहरे समुद्र में ड्रिलिंग और बुनियादी ढांचे के विकास पर काम किया जाएगा। इसके तहत ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जोन भी बनाए जाएंगे, यानी खोज से लेकर उत्पादन और उससे जुड़ी तकनीक तथा विनिर्माण तक एक घरेलू व्यवस्था तैयार करने की कोशिश है। इसी तरह भारत भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को केवल भविष्य के ईंधन के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसके इस्तेमाल के लिए परिवहन क्षेत्र में भी भारत ने कदम बढ़ाया है। देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का एक और महत्वपूर्ण आधार है सौर ऊर्जा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाई है। वर्ष 2014 में जहां देश की सौर ऊर्जा क्षमता करीब 3 गीगावाट थी, वहीं जून 2026 तक ये बढ़कर 162 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। सौर ऊर्जा को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना महत्वपूर्ण पहल है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों तक रूफटॉप यानी घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली पहुंचाना है। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत जलाशयों और अन्य उपयुक्त जल क्षेत्रों में 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित की जाएगी। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए केवल बिजली उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है। देश में उपलब्ध संसाधनों से अधिक मूल्य पैदा करना और आयात पर निर्भरता कम करना भी जरूरी है। इसी सोच के तहत मई 2026 में सरकार ने कोल गैसिफिकेशन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। इसके तहत कोयले को सीधे जलाने के बजाय उससे गैस तैयार की जाती है, जिसका इस्तेमाल उद्योगों और विभिन्न रासायनिक उत्पादों के निर्माण में किया जा सकता है। समाचार कक्ष से प्रियंका।

0: अरोड़ा।
1: श्रोताओं, ऊर्जा के बाद अब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की। किसी भी देश की सुरक्षा केवल उसके सैनिकों की बहादुरी पर निर्भर नहीं करती। आधुनिक युद्ध में हथियार, मिसाइल, ड्रोन, रडार, संचार व्यवस्था और दूसरी तकनीकें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जरूरी है कि देश इन महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर अधिक निर्भर न रहे। भारत में लंबे समय तक रक्षा उपकरणों की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा किया जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति को बदलने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इस बदलाव की सबसे स्पष्ट मिसाल ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली। इस अभियान में कई स्वदेशी प्लेटफॉर्म और प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। इससे ये दिखा कि देश में विकसित रक्षा तकनीक केवल प्रयोगशाला या परीक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक सैन्य परिस्थितियों में भी उपयोगी साबित हो सकती है। आइए अब समझते हैं कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में क्या कदम उठाए हैं और इन प्रयासों से देश की सुरक्षा क्षमता किस तरह मजबूत हुई है।
2: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सोच के तहत भारत ने रक्षा खरीद की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। घरेलू कंपनियों से खरीद को प्राथमिकता दी गई है और कई ऐसे रक्षा उपकरणों की पहचान की गई है जिन्हें अब देश में ही बनाया जाना है। मई 2026 तक 5,521 उपकरण सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में शामिल किए जा चुके थे, यानी जिन सामान और कलपुर्जों के लिए पहले विदेशों पर निर्भरता थी उन्हें धीरे धीरे देश में ही बनाने की दिशा में काम हो रहा है। सिर्फ बड़ी रक्षा कंपनियों पर निर्भर रहने की बजाय इस व्यवस्था में छोटे उद्योगों, स्टार्टअप और निजी कंपनियों को भी जोड़ा जा रहा है। आईडेक्स जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नई तकनीकों पर काम करने वाले स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को सेना की जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करने के अवसर दिए जा रहे हैं। मार्च 2026 तक आईडेक्स के तहत 676 स्टार्टअप और नवाचारकर्ताओं की भागीदारी रही तथा 551 डिजाइन और विकास अनुबंध किए गए। रक्षा विनिर्माण के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे भी विकसित किए जा रहे हैं। जुलाई 2026 तक दोनों रक्षा गलियारों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका था और करीब 70,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए। इस पूरी प्रक्रिया का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसी अवधि में रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया। यानी भारत केवल अपनी जरूरतों के लिए रक्षा उपकरण बनाने की दिशा में ही आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि दूसरे देशों को भी रक्षा उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। ब्रह्मोस इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित इस मिसाइल प्रणाली ने भारत में उत्पादन और तकनीकी क्षमता के विकास के साथ एक सशक्त औद्योगिक आधार तैयार किया है। आज ब्रह्मोस भारत की रक्षा क्षमता के साथ साथ उसके बढ़ते रक्षा निर्यात का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी तरह आकाश मिसाइल प्रणाली, तेजस लड़ाकू विमान, पिनाका रॉकेट प्रणाली, स्वदेशी तोपें और आधुनिक ड्रोन तथा ड्रोन रोधी प्रणालियां ये दिखाती हैं कि आत्मनिर्भरता अब केवल हथियार बनाने तक सीमित नहीं है, इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। हथियारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, सॉफ्टवेयर, कलपुर्जे और नई तकनीकों तक। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्रोताओं, ऊर्जा और रक्षा दोनों क्षेत्रों की ये यात्रा एक बात स्पष्ट करती है कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता किसी एक योजना या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसका संबंध देश की अपनी क्षमता विकसित करने से है, चाहे वो ऊर्जा क्षेत्र हो, नई तकनीक हो या महत्वपूर्ण उपकरणों का देश में उत्पादन। अब आने वाले वर्षों में चुनौती ये होगी कि इन प्रयासों को और बड़े स्तर पर ले जाया जाए, नई तकनीक में निवेश बढ़े, निजी उद्योग और छोटे उद्यमों की भागीदारी बढ़े, देश में जरूरी कलपुर्जों और कच्चे माल का उत्पादन हो और हमारी आपूर्ति व्यवस्था किसी भी बाहरी संकट का सामना करने में पूरी तरह सक्षम बने। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एकचत्वारिंशदधिकत्रयोदशसहस्रकोटिरूप्यकाणां पञ्चपरियोजनाः अनुमोदिताः, यत्र चतस्रः रेलपरियोजनाः एका राजमार्गपरियोजना वर्तते। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनीवैष्णवः असूचयत् यत् सर्वकारेण प्रतिवर्षं प्रायः 30 अधिकैकशत अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं सार्वजनिकनिवेशः क्रियते, येन सततार्थिकविकासः संवृत्यते। सर्वोच्चन्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणात् परं परीक्षापरिष्कारे राधाकृष्णनसमित्याः संस्तुतीनां क्रियान्वयनाय केन्द्रसर्वकारस्य प्रतिवचनम् ऐच्छत्। कोलम्बियादेशे भीषणभूकम्पेन मृतानां संख्या 12,300 यावत् प्रवर्धिता। अपि च भारतेन प्रथमनिकषस्पर्धायां श्रीलंकादलं 65 अधिकैकशत धावनांकैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां समुपविष्टेन केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन अद्य 140,13,000 करोड़ रुपयेकाणां पञ्चप्रमुखपरियोजनानाम् अनुमोदनं कृतम्।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी।
0: एतासु चतस्रः रेल परियोजनाः एका च राजमार्ग परियोजना समाविष्टा अस्ति। नवदिल्ल्यां मन्त्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः असूचयत् यत् रेल विभागस्य चतस्रः बहुमार्ग परियोजनाः पश्चिमबंग, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश राज्यानां 8 जनपदान् समावेक्ष्यन्ति। एतासु खड्गपुर भद्रक चतुर्थ रेलमार्ग, भद्रक हरिदासपुर चतुर्थ रेलमार्ग, गुम्मिडी पुंडी गुटूर तृतीय चतुर्थ रेलमार्ग, सहिव कटक पारादीप तृतीय चतुर्थ रेलमार्ग परियोजनाः समाविष्टाः सन्ति। अनेन भारतीय रेलमार्ग संजाले प्रायः 10,400 किलोमीटर परिमितस्य नूतन मार्गस्य योगः भविष्यति।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् 50,400,09,000 करोड़ रुपयेकाणां व्ययेन युक्ताः एताः रेलपरियोजनाः 2000तमस्य 30-31 वा वर्षपर्यन्तं सम्पूर्णाः भविष्यन्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् मार्गक्षमतायाः वृद्ध्या यातायात गतिशीलतायां महान् परिष्कारः भविष्यति, येन भारतीय रेलवे संचालन दक्षता सहैव सेवा विश्वसनीयता सुदृढा संवर्तिष्यति। एताभिः परियोजनाभिः प्रायः 48,400 ग्रामाणां सम्पर्क व्यवस्था सुगमा भविष्यति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रतिपादितवान् यत् भारतस्य आर्थिक विकासः सम्प्रति वैश्विक स्तरे मान्यतां प्राप्नोति, सहैव देशः 6%-8% यावत् तीव्रगत्या संवर्धते। सः अवदत् यत् विकासस्य अयम् उपक्रमः 4 प्रमुखस्तम्भेषु आधारितो वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां 26,000 उत्तरप्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीवैष्णवः असूचयत् यत् निवेशः देशस्य विकासयात्रायाः महत्वपूर्णः भागः वर्तते, यत्र भारतं प्रतिवर्षं प्रायः 30 अधिकैकशत अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं यावत् धनं निवेशयति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् वर्धित आर्थिक गतिविधिभिः देशः सततं विकासं रक्षितुं, नूतन उद्योगावसरान् स्रष्टुं, अथ च विकासस्य लाभान् समाजस्य प्रत्येकं वर्गं यावत् प्रापयितुं सफलो जातः। अत्रावसरे

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे. उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. और सबसे पहले नज़र डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: So benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 300 points, Nifty settles below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kant Pandey. And global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख. सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे आया. सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा, हाल ही में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में किसी भी तरह की हेराफेरी से सख्ती से निपटा जाएगा और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया. निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में आज 0.2% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.5% नीचे आ गया. लगातार आज चौथा सत्र था जब सेंसेक्स में गिरावट देखी गई. वहीं निफ्टी सातवें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ. पश्चिम एशिया में कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें कम होने से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ, जिसके कारण बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ. इससे पहले कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत बहुत सुस्त रही और पूरे सत्र के दौरान दोनों के सूचकांक दबाव में रहे और बाजार में चौथरपा बिकवाली देखी गई.
0: The benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex declined 326 points or 0.42% to close at 76,910. The Nifty lost 77 points or 0.32% to settle at 24,078. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped 0.2%, while the small-cap 100 index fell 0.5%. The Sensex extended its losing streak for the fourth consecutive session, while the Nifty closed lower for the seventh straight day as fading hopes of a diplomatic breakthrough in West Asia weighed on investor sentiment. Earlier, the markets opened on a subdued note amid weak global cues. Both the benchmark indices remained under pressure throughout the session, with broad-based selling observed across the markets.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 21 के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई. सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों में पावर ग्रिड 2%, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टूब्रो 1.3% और आईटीसी में 1.2% की सुस्ती आई. वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 1.7%, एटर्नल में 1.3% और कोटक महिंद्रा बैंक में 1.2% का उछाल देखा गया.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, power decreased 1.7%, capital goods slipped 1.6%, and utilities lost 1.3%. In contrast, housing finance advanced 0.6%, focused IT as well as IT rose 0.3%, and mid-small private banks eked out a marginal gain. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,483 companies declined, 1,807 advanced, and 231 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपये पर बंद हुआ. उद्यन, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: आज लगातार चौथा सत्र हमने देखा जब सेंसेक्स में गिरावट आई. वहीं निफ्टी भी कारोबारी सातवें दिन गिरावट के साथ लगातार बंद हुआ. क्या कारण है जो मार्केट

0: संभल नहीं पा रहा है, और क्या लगता है कि इस सप्ताह में हमें कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
1: देखिए, जैसे कि कई महीनों से मार्केट का जो मूड है वो मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है और उससे जो तेल की आपूर्ति के ऊपर जो असर पड़ रहा है, जो लग रहा है उसके उन कच्चे तेलों का जो दाम, उससे जो इंडिकेशन लिया जा रहा है, संकेत लिए जा रहे हैं, उससे वो डिपेंड कर रहा है, मतलब वही इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है मार्केट मूवमेंट्स को। और अगर आप देखें पूरा साल जो है ना, अगर आप निफ्टी को 50 को देखें तो वो आपके ये तकरीबन 24,500 पॉइंट की रेंज में वो घूम रहा है। वो जब मूड अच्छा होता है, संघर्ष के बारे में खबर तो रिलीफ मिली तो वो 500 के आसपास, 24,500 के पास, और जब ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पे जैसे वो MOU हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, वो उसकी मियाद पूरी हो गई, फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो प्लस वैश्विक बॉन्ड मार्केट्स में एक ये कहें कि अमेरिकी बॉन्ड मार्केट्स में जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो उसका एक इफेक्ट वहाँ पे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, ज़बरदस्त डाउनटर्न हुआ, उसका इफेक्ट इक्विटी मार्केट में भी हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें कई बार रीइन्फोर्स कर जाती हैं और उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। बाकी क्या कच्चे तेल के दामों से हमारे आर्थिक जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम ज़्यादातर ओवरवेलमिंग अमाउंट तो हम लोग आयात ही करते हैं, तो जब भी ऐसी खबर आएगी आप सबसे पहले आप देखेंगे करेंसी जो कि हमारा भारतीय रुपया है डॉलर के वनस्पत, उसके ऊपर दबाव पहले, उसके बाद ऑलमोस्ट इमीडिएटली इक्विटी मार्केट्स, और फिर आप बाकी जो दूसरे मार्केट्स हैं उस पर आप देख सकते हैं या असर। तो ये एक मोटा मोटी चीज़ है, लार्जर जो फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। क्या इंडिविजुअल कंपनीज के बैलेंस शीट्स और दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो रेजिलियंस श्योर कर रहे हैं, मतलब इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर एक जो ग्रोथ चाहिए उसके लिए जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए वो उनको उस हद तक नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपके कच्चे तेल जो हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, वो इतना ऐसी एक मूलभूत चीज़ है, वहाँ पे आपने असर किया तो पूरे आपकी इकोनॉमी में, उसके बाद वो क्योंकि स्टॉक मार्केट को लीड इंडिकेटर बताया जाता है, वो आगे का एक इंडिकेशन देते हैं कि आगे चल के क्या होगा, तो वो चीज़ आप देख रहे हैं कि आगे चल के स्टॉक मार्केट्स को लगता है कि इम्पैक्ट होगा। कई बार एक्यूरेट नहीं होता, कई बार एक्यूरेट होता, कई बार सेंटिमेंट से इम्पैक्ट होता है, पर कई महीने हो गए हैं और आप इसमें आप मार्केट सेंटिमेंट को आप निगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना फंडामेंटल मूलभूत चीज़ है।
2: निफ्टी एट 24,000 उद्यन, इट्स बीन अ स्टिकी नोट काइंड ऑफ थिंग। इफ वी लुक बैक इवन 2 years बैक, इट वॉज हॉवरिंग समवेयर अराउंड 24,000 इटसेल्फ। अगेन we are well into the second quarter of 26-27 fiscal now, and yet hovering around 24,000. Of course we have the factors which is kind of driving it or not driving it. Having said that, Udin, we saw the first quarter results has been being quite promising if we look at the results in face of the turmoil or the uncertainties we have witnessed over the past 6 months, especially with the Middle East crisis, as you say. Now, can we say that the Middle East crisis has kind of outweighed the good results or the more than satisfactory results we saw in the Q1 FY 26-27?
1: Yeah, I mean, it's not bad at all. I mean, if you see the numbers. But, you know, Nishit, the challenge is what the market is concerned about is how things are going to pan out in the future. So what typically, if you're investing in something today, you're spending some money, let's use the word investing money in buying equities or directly stock, you're buying some stocks, or you're buying units of a mutual fund or whatever market linked product, you're buying some units. It could be anything. I mean, it could be buying units in an NPS, National Pension System. Now, what basically an investor, I mean, market sentiment is that

0: इसमें किसी भी तरह की हेराफेरी और इसे बदनाम करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वे मुंबई में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री पांडे ने कहा कि पहले इस्तेमाल की जाने वाली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस VWAP व्यवस्था की तुलना में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के तहत संभावित हेरफेर का पता लगाना सेबी के लिए अधिक आसान है। उन्होंने कहा कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में बाजार सहभागियों खासकर म्यूचुअल फंड और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सेबी ने बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और हेरफेर की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से 3 अगस्त को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत की थी। इस व्यवस्था के तहत कारोबार समाप्त होने के समय के आसपास एक निर्धारित अवधि में खरीद और बिक्री के आदेश लिए जाते हैं और उन्हें नीलामी प्रक्रिया के जरिए उनका मिलान किया जाता है। श्री पांडे ने यह भी कहा कि अब तक CAS में सेबी को किसी भी तरह की हेराफेरी के संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने इस नई व्यवस्था को बाजार के लिए एक बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। उदयन, एक नई शुरुआत जिस तरह से सेबी के माध्यम से की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या अभी की हम बात करें तो इसके क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं?
1: देखिए, ये बिल्कुल अलाइन कर रहे हैं, जो विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरे एक्सचेंज उनमें भी इस टाइप के प्रोसेसेस हैं, इस टाइप का सिस्टम है, तंत्र है, तो उनके साथ आप अलाइन कर रहे हैं। तो कोई फंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई लार्ज इन्वेस्टर है जो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उनको बेसिकली जब आप विश्व के साथ तंत्र के साथ जोड़ रहे हैं तो आपके सिस्टम्स हारमोनियस होना पड़ता है। चाहे आप टैक्सेशन करें, चाहे आप एनी मनी लॉन्ड्रिंग के से जुड़े हुए जो रेगुलेशंस है वो करें, या स्टॉक मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है वो अलाइन करें। और थ्रू आउट हमारे देश में हम लोगों ने कोशिश की है कि हम जुड़े रहें, कि जैसे दूसरे जगह में होता है, दूसरे देशों में होता है, दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करें। ये उन लाइन में है जो इसे टीथिंग प्रॉब्लम, जैसे बच्चों के दांत जब निकलते हैं तब उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये वो वाले टीथिंग प्रॉब्लम है। पार्टिसिपेशन का इशू है, जब जैसे पैसे भागीदारी या पार्टिसिपेशन बढ़ती बढ़ेगी आप पाएंगे कि वो नॉर्मलाइज हो रहा है। एंड ये कोई भी एक्सपर्ट होगा, कोई भी जो इसको देख इस पर नज़र दौड़ाता है वो यही कहेगा कि ये ज़्यादा हम चेयरमैन सेबी से एग्री करना पड़ेगा कि ये ज़्यादा पारदर्शिता वाली सिस्टम है, क्योंकि वो आप उस सेशन में प्राइस डिस्कवरी हो रही है, वनस्पति इसकी की एवरेज निकाला जाए, वो पूरा सेशन प्राइस डिस्कवरी के लिए है जो आखिर में हो रहा है। तो वो उससे जो आपके पैसिव फंड्स हैं, ETFs वगैरह हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, उनके लिए क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जितना बेहतर करेंगे उतना उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर होगा, तो उससे आप जो आप और हम जैसे निवेशक हैं वो जिसे ट्रैकिंग एरर बोलते हैं कि इंडेक्स से कितने दूर रहे, इंडेक्स तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रैकिंग एरर जैसी चीज़ों में वो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ये FNO और दूसरे डेरिवेटिव्स प्लेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप और हम जैसे निवेशकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
0: उदयन, क्या ये इकोनॉमिक वैल्यूज को स्टेबिलिटी देने की भी एक कोशिश है जिस तरह से RBI कर रहा है, खासतौर पर उस मामले में जहाँ पर हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं?
1: नहीं, ये विश्व के जो सिस्टम्स हैं, जैसे हम फैटका जो मनी लॉन्ड्रिंग के, आप देखते होंगे बैंक्स में आप फॉर्म भरना पड़ता है फैटका, वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, दूसरे जो चीज़ें हैं वो हम एक हर जगह में हम ग्लोबल सिस्टम सब सरकारों में उनके जो तंत्र हैं उनमें, ताकि एक पारदर्शिता रहे, सिस्टम सिमिलर रहे, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश जाएंगे उसका एक अलग सिस्टम करेंगे तो आपके लिए खर्चा बढ़ जाता है, तो ये हार्मोनाइज करने की वाली बात है।
0: आगे बढ़ते हैं। सरकार ने घरेलू PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस की ये योजना 1 सितंबर से लागू होगी। इस पहल का उद्देश्य देशभर में घरों तक साफ, सुरक्षित और पाइप वाली सस्ती कुकिंग गैस पहुंचाना है। अभी देशभर में 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन है। मंत्रालय ने कहा कि पाइप वाली नेचुरल गैस घरों के लिए LPG सिलेंडर और खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित, साफ तथा सुविधाजनक विकल्प है। और अब एशियाई बाजारों की बात करें तो आज दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 5.8% का नुकसान देखा गया। जापान का निक्केई 225 3.2% नीचे

0: Carney said, over the last number of weeks, Canada has engaged in intensive discussions with the United States to address outstanding trade issues and deliver greater certainty and real benefits for Canadians. And continuing, the United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice, citing regional tensions and concerns over threats to regional and international security. UAE Foreign Ministry Communications Director Afra Al-Hameli said the decision is aimed at protecting regional stability and maintaining the integrity of the international financial system in accordance with international law and global standards. The announcement came after the UAE said its air defense systems detected two ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. However, Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakay categorically rejected the United Arab Emirates' claim that Iran had launched a missile towards that country, calling it harmful to regional trust and security efforts. Despite that, Tehran has warned that Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States. And moving on to crude now. The global crude oil prices rose to a three-week high today as tensions in the West Asia intensified. Brent crude was trading 0.5% up at $91.49 per barrel in the intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.50 per barrel when reports last came in.
1: उद्यन हम देख रहे हैं कि लगातार ये तीसरा सप्ताह है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है. ये सोचा गया था कि शायद इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है. कोई था नज़र नहीं आ रही. आपको क्या लगता है कि अब कैसी परिस्थितियाँ हमारे सामने और आने वाली हैं?
2: देखिए, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, क्योंकि 1/5 मतलब 20% जो तेल है विश्व का, वो सप्लाई वहीं से निकलता है. और हमारे लिए, हमारे देश के लिए अगर देखें, वही इलाका है जो हमारे लिए सूट करता है, क्योंकि हमारे रिफाइनरीज हमारे पश्चिमी तटों में हैं, जो बड़े बड़े और आधुनिक रिफाइनरीज हैं. तो उनको वहाँ से सप्लाई, अगर आपूर्ति मिलती है, वहाँ पे काम होता है और फिर उसको भारत में या दूसरे देशों में भेजा जाता है, वो चाहिए होता है. अब दिक्कत यह, अगर आपूर्ति में प्रॉब्लम आएगी तो आप कहने को तो आप दुनिया के दूसरे कोने से तेल ला सकते हैं, पर एक तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है, इंश्योरेंस, सब चीज़ों में असर पड़ जाता है. दूसरा है, जो तेल वहाँ से आ रहा है उसका भी खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें भी बीमा का खर्चा बढ़ रहा है. तो और दूसरी जगह से आप लाते हैं तो वक्त ज़्यादा लगता है, तो आपका जो पूरा सिस्टम था वो डिस्टरप्ट हो जाता है. ऊपर से प्रेशर बढ़ता है, आपकी करेंसी पे प्रेशर बढ़ता है रुपए के ऊपर, तो चैलेंज तो बना रहेगा जब तक, क्योंकि हमें वो आयात करना ही है. और वो आप रातों रात आप ऑयल डिस्कवरी तो होगा नहीं, तो ये ज़रूर चैलेंज बना रहेगा. और हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर एक असर तो ज़रूर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में.
1: आगे बढ़ते हैं. सोना 0.1% की मामूली गिरावट के साथ आज 1,53,868 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. और चांदी की बात करें तो 1.7% गिरकर 2,29,225 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. उद्यन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
0: Thank you so very much, Udyan, for having joined us. And before we close, a reminder of the headlines once again. So benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 300 points. Nifty settles below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kant Pandey. And global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत

0: साथ कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
0: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णनगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक पेश की जाए। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, 4 multi-tracking projects of railways will cover 8 districts across West Bengal, Orissa, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The minister said the government has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 to 4-lane standard in Bihar.
3: 5 major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is the highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The 5th project is the construction

0: 1041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के साथ ही उनकी चिंताओं को सुनने, समझने और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए भी करें।
2: सोशल मीडिया हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द वे सिटीजन्स रिसीव, शेयर एंड रेस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन। यू शुड यूज सोशल मीडिया

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हों। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया है कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि युवा संगम के सातवें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि इससे देश भर के पात्र युवाओं को इस अनूठे युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में पंजीकरण करने और भाग लेने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। इससे पहले युवा संगम चरण 7 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 18 अगस्त थी। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हुए हैं। 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भारत ने गोल में दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर ही सिमट गई। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच पूल डी का मैच जारी है। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन से ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 5-3 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की

रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே ஜாகிருதி சர்மா. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी. 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता. केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी. अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया. ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी. नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया. और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया. मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके. और अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी.
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं. और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन. और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज

0: प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
0: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें JPSC सिविल सर्विस और JSSC CGL भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम

0: से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
3: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
2: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
1: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली

0: वाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees. Clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states, also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost-effective infrastructure top priority, says Centre will review subcontracting norms. US Ambassador Sergio Gore hails steps taken by Centre and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating US military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. And in men's cricket, India sealed a commanding 165-run win over hosts Sri Lanka in Gaul Test. Manav Sutar claims maiden 10-wicket haul. The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
3: 5 major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
3: नमस्कार। सो बेसिकली जो दो दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है, एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पज था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो top 5 ग्लोबल में आए। तो अब उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन, दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापिस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाए, जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपना एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है, कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि जैसा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% यूपीआई ट्रांजेक्शन जो 18-29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि यूपीआई और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
2: बिल्कुल। अश्विनी राणा जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप

0: एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
1: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि भाई बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं, हाँ, मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना होगा। और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल, एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी के हैं या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझें और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है? और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
2: देखिए, अभी अभी जैसे मैंने बताया कि, और अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म है साइन करना, क्रेडिट। अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इनमें आइडियाज होंगे, और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग बच्चा, उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगा कि पहली बार लोन रहा, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनके उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये है कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है। और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल ह्यूमन, जहां बैंकिंग है या कस्टमर है, दोनों ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है, थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधारम मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफ स्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो कल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके।
0: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विन जी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पर नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है, और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा, तो युवा चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो, या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
1: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो, बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी, जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की ऐड आती ही क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इशू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं, तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए, और लोन लेने की, और इतने भ्रामक प्रचार हैं उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के, ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे एप्स को बैन किया है और इस तरह के एड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस

0: रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
1: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और FDs वगैरह जो होता है उसी के बेस पे और क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है, तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम करके नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 MD CMD बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ 2 दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का जैसे आपने बताया कि यही था, FM का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खोले। और जैसे अश्विन ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट फ्रॉम एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाए, ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक अगर जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए कैच दीज पीपल यंग जो है, वही हमारा मुद्दा इसमें। और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, FDs वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए, वो हमारे लिए भी फायदा, और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो 2 दिन डिस्कशन हुआ, बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है, और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है, और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज है, इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
0: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी, वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, और साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं, जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
1: तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका, फिर अभी NPA तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया, जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होना चाहिए ताकि जिस पर्पज के, और फिर फॉलो अप, रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि NPA की वजह से कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना, कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि NPA को अब एक बार कम हो गया, ये नहीं कि दोबारा हो, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
0: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहे, तो सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी ना रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भाई हाँ भाई ज्यादातर लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांच

0: चीज मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए या कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचे और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचे बना दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज़ को अचीव करना चाहते हो, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप जैसे डिपॉजिट की बात मोबिलाइजेशन की गई, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते
1: हैं जी। और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई है, एक थीम थी, उसको लेकर आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
0: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए। लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं। अब आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है,
1: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें काम।
0: हाँ भाई, सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
2: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफ़ी अवेयरनेस है, और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपकी बात सही है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीए बढ़ रहा है, पर उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफ़ी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया है। अभी हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर की टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट की कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल रेस्ट जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है I4C इंटरनेशनल, अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है 1930 पे कॉल करके, बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे जितना लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ, तो अब लोगों को ओटीपी समझ गया कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कहीं मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फॉरम में, इवन बैंक्स अपनी मीटिंग्स में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोलेगी हर तरह के अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में है। तो इसलिए काफी बैंक्स, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है, कॉल कर सकते हैं आप इमिडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी की 1930 और ये www.cyber, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर लोड कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ, तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और ये कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिल रहा
1: है। तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
0: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है।

0: अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक एस अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं। कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें आरबीआई कर रहा है। म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है। उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है। तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजैक्शन है वो मूव होती है। तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल एम्प्लॉय की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है। तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके। उनको जनरल बैंकर एम्प्लॉय मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे, क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा ये सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है।
1: नरेंद्र जी, दो दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
2: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FFM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हुआ उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा, कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इंप्रूवमेंट के ऊपर ही। तो कोलैबोरेशन मैसेज है यहाँ पे कॉमन मैसेज कि आईटी और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो जैसे अश्विन सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा। और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर, और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे 2 दिन के डिस्कशन हुए हाई पावर कमेटी के लिए ऐसा मटेरियल बनेगा, और जैसे अश्विन सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़िए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज इम्पोर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोर स्टेप बैंकिंग है, तो वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: तो लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
2: हाँ देखिए दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है। बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
2: बदलाव देखिए अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली

0: जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते, इसलिए साइबर सिक्योरिटी, जो डिफरेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्री जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
2: देखिए, सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं, तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है, 2 अक्टूबर से कर रहे हैं, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए, और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है, और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
0: देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है, या फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट। बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं। तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, अब बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या FD के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते रहे अल्टीमेटली। तो ये है कि अब जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जैसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, PPF वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1,00,000 रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग जन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है, यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो, या जिनको उनको लगे कि यस उनके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए कि अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है, तो मॉडर्न बैंकिंग का कि ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है, और यही हमारा 2047 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिले?
0: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीता मैम ने कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है, और थ्रू डाटा एनालिटिक हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे, तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे, और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो

0: जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
1: अश्विनी जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो, तो वो क्या होगा?
2: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, एमएसएमई है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमलीजामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
6: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th line। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-lane हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
5: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने आज नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमेरिकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। और खेलों में भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका

श्रीलंका को 165 रन का से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर ऑल आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके थे, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में एफ आई

0: for 206 during the post-lunch session on the fifth and final day. Indian left-arm spinner Manav Sutar was the architect of India's victory, taking 6 wickets in the second innings to finish with a maiden 10-wicket match haul. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अंजलि। मुख्य समाचार। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 300 से अधिक हुई। नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रनों से हराया। मानव सुधार ने पहली बार 10 विकेट लिए। अब समाचार विस्तार से। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
3: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
2: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
1: श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही और भारत अमरीका संबंधों और उन क्षेत्रों पर केंद्रित थी जहां अमरीकी सरोकार जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ सकते हैं। ईरान के सशस्त्र बलों के सेना प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने फारस की खाड़ी के दक्षिणी तटों पर स्थित देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है।
4: सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन ठिकानों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। उनकी ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच ईरान पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है। यह चेतावनी वार्ता को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को लेकर अमेरिका और ईरान के विरोधाभासी बयानों के बीच आई है। 60 दिनों के समझौता ज्ञापन से कोई व्यापक समझौता नहीं हो सका, जिससे राजनयिक प्रयास और भी जटिल हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने दावा किया कि ईरान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने में विफल रहने के बाद अमेरिका अब वार्ता की संभावना तलाश रहा है। परस्पर विरोधी दावों ने कूटनीति की संभावनाओं को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है, क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास तनाव लगातार बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
1: कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हो गए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि लगभग 277 इमारतें ढह गई हैं, जबकि लगभग 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तलाश और बचाव दल मलबे के नीचे फंसे या लापता लोगों को ढूंढने के लिए अभियान चला रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डेला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। इससे सरकार को राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए विशेष उपाय करने की अनुमति मिल गई है। इस बीच कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने बताया कि देश में 220 टन से अधिक मानवीय सहायता सामग्री पहुंच चुकी है। इसके अलावा आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए 144 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। भारत ने भी कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन के

0: सिंगापुर दौरे पर हैं। ये दौरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक ISMR के तहत दोनों देशों के बीच जारी उच्च स्तरीय संवाद का हिस्सा है। श्री गोयल के साथ विभिन्न क्षेत्रों के करीब 70 वरिष्ठ उद्योगपतियों का भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करना है। एक रिपोर्ट।
1: श्री गोयल कल चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। बैठक में श्री गोयल के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। श्री गोयल सिंगापुर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। श्री गोयल सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से इस्ताना में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क YPO ग्लोबल और मिल्केन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ सरकार और उद्योग के बीच सहयोग से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर भारत सिंगापुर चौथी मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में है। ये बैठक कल होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
2: इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये बैठक द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने का अवसर प्रदान करती है। विश्व दर्पण के लिए मनोज।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नीदरलैंड्स के अम्स्टल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की मजबूत पकड़ बना ली। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर ऑल आउट हो गई। मानव सुधार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने आज कहा कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को व्यापक चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल में स्थानांतरित करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा की मांग करेगी। अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित करने संबंधी पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारियों को आदेश देने के बाद ये बयान आया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 3 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उसके परिवार से मुलाकात कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाले 20 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर प्रस्तावित 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये घोषणा दोनों देशों के बीच अंतिम समय में हुए समझौते के बाद आई। ये समझौता टैरिफ लागू होने से 2 घंटे से भी कम समय में हुआ है। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में इबोला के मामलों की संख्या 5,000 से अधिक हो गई है। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रविवार तक 5,021 मामले दर्ज किए गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 300 से अधिक हुई। नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131

0: दे कर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.

0: चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
1: So benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 300 points, Nifty settles below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kanta Pandey. In global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify.
0: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख। सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे आया। सेबी के अध्यक्ष तोहिन कांत पांडे ने कहा, हाल ही में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में किसी भी तरह की हेराफेरी से सख्ती से निपटा जाएगा और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।
1: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़ककर 76,910 पर पहुंच गया। निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में आज 0.2% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.5% नीचे आ गया। लगातार आज चौथा सत्र था जब सेंसेक्स में गिरावट देखी गई। वहीं निफ्टी सातवें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। पश्चिम एशिया में कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें कम होने से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ, जिसके कारण बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ। इससे पहले कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत बहुत सुस्त रही और पूरे सत्र के दौरान दोनों मुख्य सूचकांक दबाव में रहे और बाजार में चौथरपा बिकवाली देखी गई।
1: The benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex declined 326 points or 0.42% to close at 76,910. The Nifty lost 77 points or 0.32% to settle at 24,078. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped 0.2%, while the small-cap 100 index fell 0.5%. The Sensex extended its losing streak for the fourth consecutive session, while the Nifty closed lower for the seventh straight day as fading hopes of a diplomatic breakthrough in West Asia weighed on investor sentiment. Earlier, the markets opened on a subdued note amid weak global cues. Both the benchmark indices remained under pressure throughout the session, with broad-based selling observed across the markets.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 21 के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों में पावर ग्रिड 2%, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टूब्रो 1.3% और आईटीसी में 1.2% की सुस्ती आई। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 1.7%, एटर्नल में 1.3% और कोटक महिंद्रा बैंक में 1.2% का उछाल देखा गया।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, power decreased 1.7%, capital goods slipped 1.6% and utilities lost 1.3%. In contrast, housing finance advanced 0.6%, focused IT as well as IT rose 0.3% and mid-small private banks eked out a marginal gain. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,483 companies declined, 1,807 advanced and 231 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 पर बंद हुआ। उद्यन, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: आज लगातार चौथा सत्र हमने देखा जब सेंसेक्स में गिरावट आई, वहीं निफ्टी भी कारोबारी सातवें दिन गिरावट के साथ लगातार बंद हुआ। क्या कारण है जो मार्केट संभल नहीं पा रहा है और क्या लगता है कि इस सप्ताह में हमें कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
2: देखिए, जैसे कि कई महीनों से मार्केट का जो मूड है वो मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है और उससे जो तेल की आपूर्ति के ऊपर जो असर पड़ रहा है, जो लग रहा है उसके उन कच्चे तेलों का जो दाम, उससे जो इंडिकेशन लिया जा रहा है, संकेत लिए जा रहे हैं, उससे वो

0: डिपेंड कर रहा है, मतलब वही इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है मार्केट मूवमेंट्स को। और अगर आप देखें पूरा साल जो है ना, अगर आप निफ्टी को 50 को देखें तो वो आपकी ये तकरीबन 24,000 एक से 24,500 पॉइंट की रेंज में वो घूम रहा है। वो जब मूड अच्छा होता है, संघर्ष के बारे में खबर तो रिलीफ मिली तो वो 500 के आसपास, 24,500 के पास। और जब ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पे जैसे वो MOU हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, वो उसका उसकी मियाद पूरी हो गई, फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो प्लस वैश्विक बॉन्ड मार्केट्स में एक ये कहें कि अमेरिकी बॉन्ड मार्केट्स में जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो उसका एक इफेक्ट वहाँ पे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, ज़बरदस्त डाउनटर्न हुआ, उसका इफेक्ट इक्विटी मार्केट में भी हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें कई बार रीइन्फोर्स कर जाती हैं और उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। बाकी क्या कच्चे तेल के दामों से हमारे आर्थिक जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम ज़्यादातर ओवरवेलमिंग अमाउंट तो हम लोग आयात ही करते हैं, तो जब भी ऐसी खबर आएगी आप सबसे पहले आप देखेंगे करेंसी जो कि हमारा भारतीय रुपया है डॉलर के वनस्पत, उसके ऊपर दबाव पहले, उसके बाद ऑलमोस्ट इमीडिएटली इक्विटी मार्केट्स, और फिर आप बाकी जो दूसरे मार्केट्स है उस पर आप देख सकते हैं असर। तो ये एक मोटा मोटी चीज़ है, लार्जर जो फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। क्या इंडिविजुअल कंपनीज के बैलेंस शीट्स और दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो रेजिलियंस शोर कर रहे हैं, मतलब इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर एक जो ग्रोथ चाहिए उसके लिए जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, वो उनको उस हद तक नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपके कच्चे तेल जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, वो इतना ऐसी मूलभूत चीज़ है, वहाँ पे आपने असर किया तो पूरे आपकी इकोनॉमी में, उसके बाद वो क्योंकि स्टॉक मार्केट को लीड इंडिकेटर बताया जाता है, वो आगे का एक इंडिकेशन देते हैं कि आगे चल के क्या होगा। तो वो चीज़ आप देख रहे हैं कि आगे चल के स्टॉक मार्केट्स को लगता है कि इम्पैक्ट होगा। कई बार एक्यूरेट नहीं होता, कई बार एक्यूरेट होता, कई बार सेंटिमेंट से इम्पैक्ट होता है, पर कई महीने हो गए हैं और आप इसमें आप मार्केट सेंटिमेंट को आप निगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना फंडामेंटल मूलभूत चीज है।
1: निफ्टी एट 24,000 उद्यन, इट्स बीन अ स्टिकी नोट काइंड ऑफ थिंग। इफ वी लुक बैक इवन 2 years बैक, it was hovering somewhere around 24,000 itself. Again, we are well into the second quarter of 26-27 fiscal now, and yet hovering around 24,000. Of course, we have the factors which is kind of driving it or not driving it. Having said that, then we saw the first quarter results has been being quite promising. If we look at the results in face of the turmoil or the uncertainties we have witnessed over the past 6 months, especially with the Middle East crisis, as you say. Now, can we say that the Middle East crisis has kind of outweighed the good results or the more than satisfactory results we saw in the Q1 FY 26-27?
0: Yeah, I mean, it's not bad at all. I mean, if you see the numbers. But you know, Nishit, the challenge is what the market is concerned about is how things are going to pan out in the future. So what typically, if you're investing in something today, you're spending some money, let's use the word investing money in buying equities or directly stock, you're buying some stocks, or you're buying units of a mutual fund or whatever market linked product, you're buying some units, it could be anything. I mean, it could be buying units in an NPS, National Pension System. Now, the what basically an investor, I mean, the market sentiment is that if you are investing, do most of the people think, when do they think the investment will bear a return? And can they see that return happening? Now, if it's basically, if you look at it in a very simplified supply and demand, then, you know, when you think that you will, there are two fundamental things. One is, what is the risk of that value going down or staying where it is, whatever. That's one, which is happening to the principal. And will that money grow or not? These are just

0: क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में बाजार सहभागियों खासकर म्यूचुअल फंड और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सेबी ने बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और हेरफेर की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से 3 अगस्त को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत की थी। इस व्यवस्था के तहत कारोबार समाप्त होने के समय के आसपास एक निर्धारित अवधि में खरीद और बिक्री के आदेश लिए जाते हैं और उन्हें नीलामी प्रक्रिया के जरिए उनका मिलान किया जाता है। श्री पांडे ने यह भी कहा कि अब तक CAS में सेबी को किसी भी तरह की हेरा फेरी के संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने इस नई व्यवस्था को बाजार के लिए एक बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। उदयन, एक नई शुरुआत जिस तरह से सेबी के माध्यम से की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या अभी की हम बात करें तो इसके क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं?
1: देखिए, ये बिल्कुल अलाइन कर रहे हैं, जो विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरे एक्सचेंज है, उनमें भी इस टाइप के प्रोसेसेस हैं, इस टाइप का सिस्टम है, तंत्र है, तो उनके साथ आप अलाइन कर रहे हैं। तो कोई फंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई लार्ज इन्वेस्टर है, जो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उनको बेसिकली जब आप विश्व के साथ, तंत्र के साथ जोड़ रहे हैं, तो आपके सिस्टम्स हारमोनियस होना पड़ता है। चाहे आप टैक्सेशन करें, चाहे आप एनी मनी लॉन्ड्रिंग के से जुड़े हुए जो रेगुलेशन है वो करें, या स्टॉक मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो अलाइन करें। और थ्रू आउट हमारे देश में हम लोगों ने कोशिश की है कि हम जुड़े रहें, कि जैसे दूसरे जगह में होता है, दूसरे देशों में होता है, दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करें। ये उन लाइन में है, जो इसे टीथिंग प्रॉब्लम, जैसे बच्चों के दांत जब निकलते हैं तब उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये वो वाले टीथिंग प्रॉब्लम है। पार्टिसिपेशन का इशू है, जब जैसे पैसे भागीदारी या पार्टिसिपेशन बढ़ती पड़ेगी, आप पाएंगे कि वो नॉर्मलाइज हो रहा है। एंड ये कोई भी एक्सपर्ट होगा, कोई भी जो इसको देख इस पर नज़र दौड़ाता है, वो यही कहेगा कि ये ज़्यादा, हम चेयरमैन सेबी से एग्री करना पड़ेगा कि ज्यादा पारदर्शिता वाली सिस्टम है, क्योंकि वो आप उस सेशन में प्राइस डिस्कवरी हो रही है, वनस्पत इसके की एवरेज निकाला जाए, वो पूरा सेशन प्राइस डिस्कवरी के लिए है जो आखिर में हो रहा है, तो वो उससे जो आपके पैसिव फंड्स हैं, ETFs वगैरह हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, उनके लिए क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जितना बेहतर करेंगे उतना उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर होगा, तो उससे आप जो आप और हम जैसे निवेशक हैं, वो जिसे ट्रैकिंग एरर बोलते हैं, कि इंडेक्स से कितने दूर रहे, इंडेक्स तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रैकिंग एरर जैसी चीज़ों में वो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ये FNO और दूसरे डेरिवेटिव्स प्लेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप और हम जैसे निवेशकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
0: उदयन, क्या ये इकोनॉमिक वैल्यूज़ को स्टेबिलिटी देने की भी एक कोशिश है, जिस तरह से RBI कर रहा है, खासतौर पर उस मामले में जहाँ पर हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं?
1: नहीं, ये विश्व के जो सिस्टम्स हैं, जैसे हम फैटका जो मनी लॉन्ड्रिंग के, आप देखते होंगे बैंक्स में आप फॉर्म भरना पड़ता है फैटका, वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, दूसरे जो चीज़ें हैं वो हम एक हर जगह में, हम ग्लोबल सिस्टम सब सरकारों में उनके जो तंत्र हैं उनमें, ताकि एक पारदर्शिता रहे, सिस्टम सिमिलर रहे, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश जाएंगे उसका कि अलग सिस्टम करेंगे तो आपके लिए खर्चा बढ़ जाता है, तो ये हार्मोनाइज करने की वाली बात है।
0: आगे बढ़ते हैं, सरकार ने घरेलू PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस की ये योजना 1 सितंबर से लागू होगी। इस पहल का उद्देश्य देशभर में घरों तक साफ, सुरक्षित और पाइप वाली सस्ती कुकिंग गैस पहुंचाना है। अभी देशभर में 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन है। मंत्रालय ने कहा कि पाइप वाली नेचुरल गैस घरों के लिए LPG सिलेंडर और खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, साफ तथा सुविधाजनक विकल्प है। और अब एशियाई बाजारों की बात करें तो आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 5.8% का नुकसान देखा गया। जापान का निक्केई 225 3.2% नीचे आ गया। उदयन, आज दक्षिण कोरिया के बाजार में काफी गिरावट देखी गई, इसे आप किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, वहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स की वजह से काफ़ी हलचल मची हुई है। कुछ एक फंड्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे SK हाइनिक्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने फंड्स को, उस पर्टिकुलर फंड को, ETF को स्ट्रक्चर किया, तो वो

0: वहां का उतार चढ़ाव के कारण भी कुछ और हैं और असर भी कुछ और हैं। और ये जब एआई रिलेटेड बुलिशनेस चल रही थी तो तब उस वो इस तरह एक हाई टाइड की तरह वो उन सारे बोर्ड्स को ऊपर लेके जा रही थी। अब जब जैसे ही वहां पे पेसिमिज्म आ जाएगा थोड़ा बहुत, जो कि कल आया पिछले कुछ सत्रों से आ रहा है विश्व के मार्केट्स में, वेस्टर्न मार्केट्स में, तो आप पा रहे हैं कि साउथ कोरिया में भी असर हो रहा है। वहां पे वायलेंटली इसलिए मूव कर रहे हैं और ज्यादा शेल्वी से मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके जो एआई रिलेटेड प्लेज हैं, जो स्टॉक्स हैं, वहां पे असर ज्यादा देख रहे हैं।
1: राइट। And US President Donald Trump has delayed the planned 50% tariffs on Canadian imports worth $20 billion. The announcement came after the two countries reached a last-minute deal less than 2 hours before the sanctions were to go into effect. Canadian Prime Minister Mark Carney has said that the implementation of the tariffs has been postponed until the 21st of August. In a letter posted on social media posts, Mr. Carney said, over the last number of weeks, Canada has engaged in intensive discussions with the United States to address outstanding trade issues and deliver greater certainty and real benefits for Canadians. And continuing, the United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice, citing regional tensions and concerns over threats to regional and international security. UAE Foreign Ministry Communications Director Afra Al-Hameli said the decision is aimed at protecting regional stability and maintaining the integrity of the international financial system in accordance with international law and global standards. The announcement came after the UAE said its air defense systems detected 2 ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. However, Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakay categorically rejected the United Arab Emirates' claim that Iran had launched a missile towards that country, calling it harmful to regional trust and security efforts. Despite that, Tehran has warned that Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States. And moving on to crude now. The global crude oil prices rose to a 3-week high today as tensions in the West Asia intensified. Brent crude was trading 0.5% up at $91.49 per barrel in the intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.50 per barrel when reports last came in.
2: उद्योग हम देख रहे हैं कि लगातार ये तीसरा सप्ताह है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है। ये सोचा गया था कि शायद इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कोई था नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि अब कैसी परिस्थितियां हमारे सामने और आने वाली हैं?
0: देखिए, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, क्योंकि 1/5 मतलब 20% जो तेल है विश्व का वो सप्लाई वहीं से निकलता है, और हमारे देश के लिए अगर देखें वही इलाका है जो हमारे लिए सूट करता है, क्योंकि हमारे रिफाइनरीज हमारे पश्चिमी तटों में हैं, जो बड़े बड़े और आधुनिक रिफाइनरीज हैं, तो उनको वहाँ से सप्लाई अगर आपूर्ति मिलती है, वहाँ पे काम होता है और फिर उसको भारत में या दूसरे देशों में भेजा जाता है, वो चाहिए होता है। अब दिक्कत यह अगर आपूर्ति में प्रॉब्लम आएगी तो आप कहने को तो आप दुनिया के दूसरे कोने से तेल ला सकते हैं, पर एक तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है, इंश्योरेंस, सब चीज़ों में असर पड़ जाता है। दूसरा है जो तेल वहाँ से आ रहा है उसका भी खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें भी बीमा का खर्चा बढ़ रहा है, तो और दूसरी जगह से आप लाते हैं तो वक्त ज़्यादा लगता है, तो आपका जो पूरा सिस्टम था वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। ऊपर से प्रेशर बढ़ता है, आपके करेंसी पे प्रेशर बढ़ता है रुपए के ऊपर, तो चैलेंज तो बना रहेगा जब तक, क्योंकि हमें वो आयात करना ही है और वो अब रातों रात आप ऑयल डिस्कवरी तो होगा नहीं, तो ये ज़रूर चैलेंज बना रहेगा और हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर एक असर तो ज़रूर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में।
2: आगे बढ़ते हैं। सोना 0.1% की मामूली गिरावट के साथ आज 1,53,868 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी की बात करें तो 1.7% गिरकर 2,29,225 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। उद्यम जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: Thank you so very much, Udyan, for having joined us. And before we close, a reminder of the headlines once again. So benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 300 points. Nifty settles.

0: below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kant Pandey. And global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
1: Namaskar.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd एंड 4th।

0: भाई। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुम्मिंडी पुंडी गुदूर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी और चौथी लाइन। इसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य 24 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा, इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2000.

0: 31.
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।

0: ஒலித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இந்த இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर

कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का काम 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितम्बर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி, தி நியூஸ் ரெட் பை அகிலா. The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं. और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन. और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का. टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए.
0: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday said that the government's foremost priority is to provide high quality infrastructure while maintaining cost effectiveness. He emphasized that there can be no compromise in the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the fourth edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi.

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இந்த நினைவில் நின்ற பை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें चार रेलवे परियोजनाएं और एक राजमार्ग परियोजना शामिल है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं. और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन. और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का. टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए.
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी और चौथी लाइन. इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं. बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में

0: घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजपूत ने कहा, केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन को ब्रिटेन के सैन्य समर्थन को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि रूसी क्षेत्र पर हमलों में ब्रिटिश मिसाइल बलों की सीधी भागीदारी युद्ध में सहभागिता के समान है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2027 का शुभारंभ 17 अगस्त से 30 सितंबर तक चलने वाली विकसित भारत प्रश्नोत्तरी के साथ हो गया है। ये संवाद पूरे देश के युवाओं के लिए नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की एक सुनियोजित और योग्यता पर आधारित यात्रा में भाग लेने का अवसर है। नीदरलैंड्स के आम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with a total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाइक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise in the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for a quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. U.S. Ambassador to India Sergio Gaur yesterday described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The U.S. envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations in areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद

0: भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स में आम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The unit cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन, और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. Union Home Minister Amit Shah will chair the Southern Zonal Council SZC meeting today in Mahabalipuram, Tamil Nadu. The council comprises the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana and the union territories of Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. The meeting will be attended by the Lieutenant Governors, Chief Ministers and Administrators of the member states and union territories of the southern region along with 2 senior ministers from each state. Union Minister Kiran Rijiju has termed the claim as false that China has entered 60 kilometers into Arunachal Pradesh. In a social media post, Mr. Rijiju said, photos and videos from Bangladesh were being used to falsely portray Chinese entry into Arunachal Pradesh. He said such claims could demoralize army personnel guarding the border and create unnecessary confusion. The minister said that the India-China border issue is a serious matter and appealed to people to not make any false or unverified claims on such a sensitive issue. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his 2-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defence Minister of Armenia, Karen Rutyan, and First Deputy Defence Minister and Chief of General Staff of Armenia, Ed

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग ललित में सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे नीलाद्रि सेन। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिमिर रॉय चौधरी।
1: இதுவரை பண்டிட் நீலாட்ரி சென் அவர்களின் சிதார் இசை கேட்டீர்கள். தொடர்வது சவிதா தேவி அவர்களின் தும்ரி.
2: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विदुषी सविता देवी का उपशास्त्रीय गायन। लीजिए सुनिए ठुमरी। बोल हैं सावन आए तुम नहीं आए।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी सविता देवी से ठुमरी। आइए सुने एक और ठुमरी। बोल हैं सैया जुल्म करे, दैट वॉज ठुमरी। लिसन वन मोर ठुमरी बाई सविता देवी। बोल सैया जुल्म करे।

0: अभी आप सुन रहे थे विदुषी सविता देवी से ठुमरी, तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद हिदायत खान, सारंगी पर अनंत कुंटे और हारमोनियम पर थे अरविंद चाफलकर।
1: இதுவரை சவிதா தேவி அவர்களின் தும்ரி இசை கேட்டீர்கள். தொடர்வது ரசிக்லால் அந்தாரியா அவர்கள் பாட்டு.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिंडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षीय गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। उनसे पहले जस्टिस मार्ली बैकुंग इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली मिजो महिला थी। हेलियन डांगलियानी फिलहाल आइजोल जिला अदालत में जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही नीदरलैंड्स के आम्स्टरडैम में एफ

आईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल में 13,031 करोड़ रुपए की इन परियोजना को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमुंडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारदीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर रेल मार्ग की वृद्धि होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इससे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब इस महीने की 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। झारखंड में 26 दिनों से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं को की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षा रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें JPSC सिविल सर्विस और JSSC CGL भी शामिल है। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार के इस फैसले से 2,628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हुई है। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और अब खेल खबरें। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। उधर श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर सिमट गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कुछ हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही